0: budgets blown by a new tourist tax. A 5% levy will be added to bills at hotels and restaurants from September 1st. Prince Harry, Sir Elton John, Liz Hurley and several other public figures need to cough up $21 million New Zealand dollars to the Daily Mail in the next 7 days. And that's just an initial cost, according to the Daily Mail, after a judge imposed an order for legal costs over their failed privacy case. Despite a 30-win, no-loss record against the Wallaroos, Black Ferns coach Whitney Hanson says they aren't taking the Aussies lightly.
1: There's a bit of a new look to them. They've got a new coaching group, which will bring something different. And I think, you know, year on year, every women's team we play against gets better.
0: Kick-off 3:05 Mount Smart, and three NPC games today. Tasman against Southland at 1:05, North Harbour and Auckland 5:35, and Bay of Plenty face Taranaki in Rotorua at 7:35. Rugby with All Blacks, travelandhospitality.com.
2: Sports News,
3: brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Bollywood's biggest hits.
4: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस.
5: सूचित किया जाता है कि बॉलीवुड नौसोरी के स्वर्गीय श्रीमान और श्रीमती मुतुस्वामी गौंडर की पुत्री सनीवेल ऑकलैंड के जेफरी होग की पत्नी, ऑकलैंड के सनील स्वामी और करिश्मा कुमार की मां सनीवेल ऑकलैंड की विजय लक्ष्मी की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार सोमवार 24 अगस्त के दिन में 1 बजे मनुकाउ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनुई रोड वीरी ऑकलैंड में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-213-7900 पर कॉल कर सकते हैं. सूचित किया जाता है कि बॉलेवु नोसोरी फिजी के स्वर्गीय मिस्टर एंड मिसेस मुतुस्वामी गौंडर की पुत्री सनीवेल ऑकलैंड के जेफरी होक की पत्नी, ऑकलैंड के सनील स्वामी और करिश्मा कुमार की मां सनीवेल ऑकलैंड की विजय लक्ष्मी की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार सोमवार 24 अगस्त के दिन में 1 बजे मनुकाउ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनुई रोड वीरी ऑकलैंड में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-213-7900 पर कॉल कर सकते हैं.
4: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.

0: Chikash.
1: Weather update. सुबह के समय कुछ जगहों पर थोड़ी मोड़ी बारिश हुई है, लेकिन आज बाद में चलकर मौसम साफ होता नजर आएगा। आइसोलेटेड मॉर्निंग शावर्स हो चुका है। क्लाउडी पीरियड्स आज आप महसूस करने वाले हैं। हाई ऑफ 16 डिग्रीज आज टेम्परेचर रहने वाला है। ओवरनाइट टेम्परेचर 9 डिग्रीज आज होने वाला है। सनसेट एट 5:53 PM।

Radio Pub. बहाने हमें रोकते हैं, लेकिन हिम्मत हमें आगे बढ़ाती है। आज खुद पर भरोसा करें, एक कदम उठाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। आपकी ताकत आपके बहानों से बड़ी है। एक्सक्यूजेस, हम सभी ने इसको एक्सपीरियंस किया है। अगर कुछ हमारे मुताबिक से नहीं जाता तो एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि भाई चलो कुछ और गड़बड़ थी, ना कि खुद में और बेहतर तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो बहाने ये कम बनाइए और बहानों से बढ़कर आपकी ताकत है। तो अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, मिलता जुलता इससे ये कहावत है। तो इसके बारे में सोचिएगा और सोचते हुए हमारे साथ में आप शामिल हो चुके हैं। मैं हूं जिकाश एंड रेडियो पब में आप सभी का हम दिल इस्तकबाल कर रहे हैं। 104.2 FM और रोवर के ज़रिए आप और हम जुड़ चुके हैं और आज शाम 6 तक हमारा साथ यूं ही बना रहेगा। हम तो बिल्कुल तैयार हैं। आई होप यू आर ऑल्सो रेडी टू रॉक एंड टू एन्जॉय द प्रोग्राम टुडे। बहुत सारी बातें करनी है आपसे अबाउट थिंग्स हैपनिंग ऑल।

अराउंड अस, स्पोर्ट्स की दुनिया में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में, या फिर आप के किसी पसंदीदा टॉपिक को हम टच करने वाले हैं, तो क्या बातें आप करना चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं बाय गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद अस ऑन आवर टेक्सटिंग प्लेटफॉर्म 5599, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन 0800-004-866। तो आइए स्वागत करते हैं आपका और चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस पहले घंटे की विद दिस ऑसम ट्रैक राइट हियर ऑन हम। क्योरा

0: listening to Chikash.
1: सरताज खान बाना और सरवर खान प्लस रफ्तार की आवाज़ें अभी आप सुन रहे थे। आइए सबसे पहले हम कुछ इवेंट्स पर नज़र दौड़ाते हैं जो फ़िलहाल जारी है एंड दे आर गोना सम ऑफ देम जो नियर फ्यूचर में होने वाले हैं। प्लेयर्स ऑफ ऑल स्किल्स नाउ, इसके लिए रजिस्ट्रेशन तो ख़त्म हो चुके हैं। देर इज़ दी फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट, लेकिन अगर आप जाकर इसको देखना चाहते हैं टू एक्सपीरियंस नेशनल लेवल कैरम कंपटीशन, तो आपको जाना है बर्कनहेड स्काउट्स हॉल टुडे एंड टुमारो। यहाँ पर फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट ये शुरू हो चुका है एंड इफ़ यू गॉट टाइम ऑन योर हैंड्स एंड इफ़ यू आर अराउंड द एरिया इन बर्कनहेड, डू गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि यहाँ पर इस देश के यानी कि न्यूजीलैंड के एक से एक बड़े बड़े और एक से एक सीखते हुए कलाकार आपको नज़र आएंगे, दोज हु लव The game of carom. इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी, ये बस इट्स अराउंड द कोना एंड दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट दे विल बी सेलिब्रेटिंग श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव फ्रॉम 29th of August आने वाले शनिवार से लेकर फ्राइडे 4th September के बीच में एट द केव, देर इज एट 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मनुकाव विच इज ऑपोजिट द वेयर हाउस एवरी नाइट फ्रॉम 7:30 PM। इसके साथ में रामकृष्ण मंदिर 25 Onslow Ave मनुकाव में ये भी सभी भक्तों को इनवाइट कर रहे हैं फॉर कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव सरडे 29th August से लेकर फ्राइडे 4th September के बीच एट रामकृष्ण मंदिर 25 Onslow Ave मनुकाव में फ्रॉम 7:30 PM। इसके अलावा न्यूजीलैंड संगम एनजेड संगम ये ऑर्गेनाइज कर रही है कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव इस साल के लिए 28 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं टिल द 4th of September। वेन्यू है डेको ऑफ एलिगेंस एट 60 Lembi Drive मनुकाव। डेली प्रोग्राम 7:30 से शुरू होगा जहां पर कृष्ण कथा आरती फॉलोड बाय प्रसाद और महाप्रसाद सभी रोज़ आपके लिए उपलब्ध की जाएगी। यहां पर कथा व्यास रहने वाले हैं नलेश नायडू जी।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Attention everyone. हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी

0: सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Center. Mover, tools, bikes, ya fir sab kuch rakhne ke liye space chahiye? Find shed loads at Mitre & Mega Westgate and Henderson. Garden or lifestyle sheds ki great range ke saath apna perfect storage solution sort kare. Aaj hi baat kijiye with the team at Mitre & Mega Westgate and Henderson.
3: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandeshe bheje ja sakte hain. मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
4: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
5: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
4: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
7: At Bunnings, we've got gifts built for Dad, like the Jack Garden Upwall System, only $85.95. Ryobi 1 Plus 18-volt pruning saw, tool only, just $149. That's Father's Day sorted at Bunnings.
8: Bunnings Warehouse.
7: Lowest prices are just the beginning.
9: In Yucatan, the local Mexican surfers pronounce cero, cero. During the warm summer evenings in bars around the coast of Nayarit, you'll hear them say, cero. In New Zealand, zero alcohol Corona cero is pronounced cero. Easy, eh? However you say it, Corona cero will always be the smooth zero alcohol beer that's still served with a lime.
10: घर ढूंढते ढूंढते
11: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
12: अब हमारा क्या होगा?
13: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
11: तो क्या करें?
14: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: बाईस मिनट हो रहे हैं 12 बजकर एंड मैं हूं जिकाश रेडियो पब में आप मेरा साथ दे रहे हैं। वीकेंड आने वाला होता है या फिर जब आ जाता है तो स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगती है राइट फ्रॉम थर्सडे, क्योंकि NRL NPC गेम्स और इसके अलावा अभी फ़िलहाल ICC क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेल जारी है। दिस इज़ टेस्ट 2 of 2। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट जीता था एंड इन द सेकेंड टेस्ट डे 1 ये शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया चोज टू बॉल और फिलहाल बांग्लादेश 11 रन्स पर है, तो इस पर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वैसे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोका मैच भी होने को है बिटवीन ऑकलैंड सिटी एंड सेंट्रल कोस्ट। दिस इज़ इन द OFC मेंस चैम्पियनशिप जो फिजी में है, OFC चैम्पियंस लीग, और ये आज 3 बजे पर खेला जाने वाला है द फाइनल ऑकलैंड सिटी और सेंट्रल कोस्ट के मध्य में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैचेस ये रहे हैं स्पेशली इन द डेवलपमेंट ऑफ ओशियानिया कंट्रीज एंड फिजी से भी क्लब्स खेल रहे थे इसमें। और नाउ दैट सेंट्रल कोस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आर प्लेइंग अगेंस्ट आवर ऑकलैंड सिटी, हम चाहते हैं कि आप प्रिडिक्ट करें कि इसको क्या होने वाला है। ऑकलैंड सिटी हु वेयर द विक्टर्स इन द ए लीग और सेंट्रल कोस्ट मरीनस, नहीं सेंट्रल कोस्ट नाम से खेल रहे हैं, तो इन दोनों के मध्य में जो खेल होने वाला है 3 PM विद इन 15 मिनट्स, आप अगर एक आर्डेंट सोका फॉलोअर है एंड स्पेशली यू फॉलो लोकल क्लब्स, क्लब सोका आप देखते हैं, इसका मज़ा लेते हैं, डू लेट मी नो कि आप क्या सोचते हैं इस मैच में कौन जीतने वाला है, ऑकलैंड सिटी या सेंट्रल कोस्ट। अपना जवाब हमारे पास आप भेजें 5599 पर ऑफकोर्स विथ योर नेम।

अपने प्रेडिक्शंस हमारे पास भेजते रहे। ऑकलैंड सिटी और सेंट्रल कोस्ट के बीच में आज फाइनल होने वाला है ओएफसी मेंस लीग के तहत इन फिजी, एंड इसमें आप क्या सोचते हैं कौन जीतने वाला है? राज है मनोरेवा से, यू प्लेस्ड योर बेट ऑन ऑकलैंड एफसी, आई थिंक सो टू, लेकिन शायद कुछ लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया से हैं एंड यू थिंक द ऑस्ट्रेलियन क्लब आर गोना बीट आवर ऑकलैंड एफसी। तो अगर आप ऐसा आप सोचते हैं, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। 5599 पर अपना प्रेडिक्शंस आप हमारे पास भेजे। इसके अलावा नाउ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या ये आपके लिए काम कर रहा है, और आर यू ऑलरेडी और ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो ऑकलैंड में आपको मिल रहे हैं? क्या आपके ट्रेन्स विदाउट रीज़न या फिर विद वैलिड रीज़न ये कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन अहम मौके पे जब आपको ट्रेन पकड़ना है एंड यू फाइंड आउट कि भाई ट्रेन चल नहीं रहे या फिर बसेस रूट्स ये कैंसिल हो जाते हैं, इफ़ यू फाइंड योरसेल्फ इन दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस मोर ऑफन, वेल ऑकलैंडर्स मे हैव हर्ड ऑकलैंड काउंसिल इज टेकिंग बैक कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो क्या आप ऑकलैंड काउंसिल पर अपना भरोसा रख सकते हैं टू मेक थिंग्स राइट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट? इसका मतलब क्या है? चेंज इज कमिंग ऑन 1st October व्हेन द इलेक्टेड मेंबर्स ऑकलैंडर्स वोटेड फॉर टेक चार्ज ऑफ आवर सिटीज रोड्स। वी वांट अर्ली विंस ऑन द बोर्ड एंड दैट्स वेयर ऑकलैंडर्स कम इन। एवरी डे यू टेल अस अबाउट द सेम फ्रस्ट्रेटिंग ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक बैक्ड अप बिकॉज पार्क्ड कार्स ब्लॉक अ लेन, अ सेट ऑफ ट्रैफिक लाइट्स दैट कीप्स एवरीवन वेटिंग, कंफ्यूजिंग रोड मार्किंग्स, अ पूली डिजाइंड इंटरसेक्शन, short stretches of road where buses and carpoolers get stuck for no good reason. These aren't billion-dollar gold-plated projects. They are the everyday issues that make every journey slower, more stressful and more frustrating than it needs to be. So, good news kya hai? Well, many of them can be fixed quickly. Aapne bhi dekha hoga ki aise kai raaste hain jahan par bewajah hi T3 lane kar diya gaya hai, and what trucks and buses do, they travel on the normal lanes up, leaving T3 lanes bilkul empty, or this backs up traffic. So agar aisi samasyaen hain jo aap ne dekha hai and you think they can be made better, well the quick fix program is focused on early wins, that's identifying and delivering practical support improvements that reduce congestion, improve traffic flow and make it easier for people to get where they need to be. So what counts as a quick fix? Removing or changing on-street parking, improving road layouts, optimizing traffic lights, fixing confusing road signs, iske alawa helping buses and vehicles, and improving intersections. Iske liye Auckland Council ne ek page create kiya hai jahan par you can report a traffic or transport issue. Shayad this is an annoying truck and trailer that's parked at an intersection, aur ye इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को रिड्यूस करता है डाउन टू वन लेन। तो इसके लिए auckland council.govt.nz उस वेबसाइट पर जाए, वहाँ पर रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, रिपोर्ट ट्रैफिक इश्यू, ये लिंक आई विल बी शेयरिंग ऑन माय पेज एंड एज वेल एज हम FM फेसबुक पेज। मेक श्योर यू गो देयर और अपनी दिल की भड़ास जो है, there are some inconsiderate people jo aise hi park kar dete hain and they do not give two cents about other people. To iske liye ye page set up kiya gaya hai jahan par aapki privacy ka bilkul dhyan rakha gaya hai. You can take photos, upload photos and complain about an issue that you or people in your area are having. To keep an eye out for this link on our Facebook page, एंड वहाँ जाकर आप कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं, एंड देन कम 1st October शायद ऑकलैंड काउंसिल आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शुरुआत कर दे।

0: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी टिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टप से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
4: Rev those savings engines and rush into Briscoe's for huge half-price deal winners. All air fryers, duvet sheets, cookware sets, towels, robovacs and microwaves are half price. In Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: Make your space your own for lease at Mitre 10. Save $150 on a Robinhood 60cm dishwasher, now $449. And conquer the clutter with 30% off JobMate heavy-duty storage boxes. T's and C's apply. Shop these great deals and more at Mitre 10.
6: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए हरी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर ऑकलैंड
7: द बीट ऑफ बॉलीवुड
8: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है या
7: रेडियो पब
9: रेडियो पब का सफर जारी है मैं हूं जिकाश आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं एंड राइट टिल 6 पीएम हम आपके साथ में रहने वाले हैं नेशनल प्रोविंशियल चैंपियनशिप हैज़ गॉन इनटू वीक 4 जहां पर थर्सडे को कैंटरबरी और नॉर्थलैंड के बीच में खेल हुआ एंड नॉर्थलैंड केम आउट विक्टर्स 36-12 से कैंटरबरी को इन्होंने पराजित किया है कल खेल हुआ बिटवीन हॉक्स बे एंड मनवातु हॉक्स बे थम्प्ड मनवातु बाय 59 points to 17 अभी थोड़ी देर में 5 मिनट हो जाएंगे जब 1:00 टेस्मन और साउथलैंड आमना सामना करने वाले हैं इसके बाद में 5:35 PM पर आज नॉर्थ हार्बर और ऑकलैंड खेलने वाले हैं उसके बाद में 7:35 PM पर बे ऑफ प्लेंटी आर चेकिंग ऑन थरनाकी दैट्स द लास्ट मैच फॉर टुडे टुमारो वेकातो और काउंटीज मनुकाउ खेलने वाले हैं एंड द लास्ट मैच फॉर द वीक ओटाको और वेलिंगटन कल शाम 5:05 PM पर खेलने वाले हैं अपना प्रेडिक्शंस हमारे पास भेजते रहें कि ऑकलैंड सिटी और सेंट्रल कोस्ट के मध्य में जो आज फाइनल होने वाला है इन दी ओएफसी मेंस लीग चैंपियंस लीग में इन फीजी इसमें आप क्या सोचते हैं कौन जीतने वाले हैं 3 PM पर ये गेम शुरू होगा इस पर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे

0: Yo.
1: Big Radio Pop.
2: All right, a lot of people have said that Auckland City will be the victors in tonight's, this evening's match between Auckland City and Central Coast. Well, I hope so. लेकिन इसके बारे में अपडेट्स हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे. अगले घंटे पर आपके बर्थडे पार्टी में हम शामिल होना चाहते हैं. तो अगर आपके घर पर किसी का बर्थडे है या फिर आप कहीं पर जाने वाले हैं जहां पर एनिवर्सरी या फिर बर्थडे मनाया जा रहा है, ड्रॉप अस अ मैसेज और मेक श्योर कि रोवा पर आप हम एफएम को एकदम से लाउडली बजा दें ताकि हम आपकी खुशियों को दुगना करने पहुंच जाए जहां कहीं पर भी आप हैं. तो बर्थडे संदेश बस थोड़ी देर में इन दी नेक्स्ट आवर 5599 पर अपना मैसेज भेजें.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जोगी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी
3: रुजबी टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की बाली बुला रहा
3: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
6: हेलो एवरीबॉडी
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
7: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे ओनली ऑन हम
8: The new Macca's Barbecue Hash Stack Burger. Not new, Greg's made it before.
9: Yeah, Noah's made it.
10: Sam's made it too.
8: Oh, new for us, but you've been eating the hash brown for ages. Macca's Barbecue Hash Stack. T's and C's apply.
11: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure, and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
12: Knock, knock. It's me, Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call.

Yo. Big Radio Pub. ठीक एक बज रहा है एंड रेडियो पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। आई होप यू आर एंजॉयिंग द प्रोग्राम सो फार। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं ऑन 104.2 एफएम एंड ऑन रोवा। रोवा है अगर आपके पास तो यू आर इन द विनिंग टीम, क्योंकि आप तक हम ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट पहुँचाते हैं राइट एट योर फिंगर टिप्स। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अभी जारी है हमारे साथ में होकर रक्षाबंधन के लिए, तो आप जानते ही हैं कि दो प्रमोशंस चल रहे हैं। इसके साथ में हम बोर्डिंग कोर ये ऑन रोवा जाकर आपको खेलना पड़ता है, फिर अपना एंट्री रजिस्टर करना पड़ता है। इसके अलावा फादर्स डे ऑन एयर

All right, let's talk about the competitions and promotions jo hamare saath mein hokar aap jiska hissa ban sakte hain. The first one that I'm going to talk about is Raksha Bandhan on our social media. Iske bare mein to aap jante hi honge, and a lot of our announcers have been talking about this, and kuch bahut hi awesome, bahut hi pyare pyare photos hame mil rahe hain on our Facebook page jahan par humne ek Raksha Bandhan ka post dala hai. Bas aapko itna karna hai, us post ke niche comment section mein ek photo aap dale of something that is of a lot of value, a lot of sentimental value for you and your brother or your sister. Shayad ek chota sa monument hai ya phir ek chota sa teddy hai, shayad ek chota sa poster hai jo aapko aapke bhai ya aapke behan se jode rakha hai. Shayad the first gift that you received from your brother or sister जब आप बहुत छोटे थे, एंड यू कैरीड इट ऑल अलोंग, एंड आपको उस चीज़ की फ़ोटो डालनी है उस कमेंट सेक्शन में, एंड उसके नीचे थोड़ा सा दो तीन लाइन में लिखना है कि वो चीज़ है क्या, एंड व्हाई डज इट होल्ड सो मच सेंटिमेंटल वैल्यू फॉर यू एंड योर सिबलिंग. बस इतना ही करना है, टैग योर सिबलिंग इन दैट फोटो, एंड जस्ट लाइक दैट यू विल बी इन द ड्रॉ.

और अगर आपकी कहानी कहानी तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन अगर आप विनर हुए तो आपकी कहानी को हम ऑन एयर रीड करेंगे फ्राइडे 28 अगस्त को, यानी कि आने वाले शुक्रवार को, अलोंग विथ $300 कैश गिव अवे टू दी विनिंग कमेंट। तो ये आप अभी जाए, अभी आप कर डाले एंड यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन $300 फॉर यू, फॉर योर ब्रदर और फॉर योर सिस्टर। इसके अलावा थोड़ी देर में हम लाइंस ओपन करने वाले हैं फॉर आवर रक्षाबंधन ऑन एयर कॉम्पिटिशन, जहाँ पर यू कैन रेव और रेंट अबाउट योर ब्रदर और सिस्टर, उनका परफॉर्मेंस रिव्यू। आप अगर काम करते हैं तो परफॉर्मेंस रिव्यू में आप जानते हैं कि आपके मैनेजर्स आपके पर्सनल रिव्यू को किस तरह से चीरते फाड़ते हैं, तो इसी तरह से आपको अपने भाई या बहन का पर्सनल रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू देना है ऑन एयर आकर, और अपने जो इमोशंस है इसको संभालिएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आप एकदम से गुस्सा हो जाए अपने भाई और बहन के ऊपर और उनको ओनिया कुछ सुना दे, नहीं। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो बस कंट्रोल में रहकर आपको ये करना है। इसके लिए आपको हम समय देंगे अराउंड 115, तो 115 के आसपास यू कैन कॉल मी ऑन 0800-004-866 एंड टेल अस व्हाई योर ब्रदर और योर सिस्टर इज़ द लवलीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड या फिर They are not. तो ये हम आपसे जानना चाहते हैं।

0: यार याद आ गई अपने दोस्तों की,
1: वो बचपन के दोस्त।
0: अजाने क्यों ये दूरियां बढ़ गई।
1: कई बार आपको लगता है कि मेरी गलती थी ही नहीं, उसी की गलती थी।
2: सच बताऊं, सही लगता है, उसी की ही तो गलती थी
0: काफी हद तक, लेकिन थोड़ी गलती तो आपकी भी थी।
1: तो इसीलिए फोन उठाओ
2: और अभी इसी वक्त उनसे बात करो,
0: वरना कहते

0: Yo.
1: Radio Pop.
2: It's 10 minutes past 1 o'clock. If you've just joined, आप सभी का स्वागत कर रहे हैं on Radio Pub. चलते हैं Christchurch, जहां पर आज बहुत ही धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट किया जाने वाला है for Ashneel Kumar and the crew and the members of Sur Sangam. ये तैयार कर रहे हैं for Raman program अनुराग जी के घर पर. तो आप सभी को हम आप सभी का स्वागत कर रहे हैं in the program first and foremost. And a big shout out goes to Ashneel. आपको ढेर सारा प्यार मिला है. आपकी लविंग वाइफ है संजेशनी एंड प्यारी सी बिटिया है आव्या. इन दोनों की ओर से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. एंड ऑल द वे फ्रॉम ऑकलैंड ज्ञान प्रकाश श्रद्धा संघ के जितने भी मेंबर्स है आपको विश कर रहे हैं वेरी हैप्पी बर्थडे. आपके जितने भी परिवार वाले हैं फिजी में एंड इन ऑकलैंड एंड इन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भाई है आपके अनित, इनकी ओर से भी आपको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया गया है. तो हमारी ओर से भी आपको भाई हैप्पी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आशा करते हैं कि आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया बीते एंड आने वाला साल आपके लिए खुशियों से भरा रहे, कामयाबी से भरा रहे. वेरी हैप्पी बर्थडे टू Ashneel. आप सभी को द एंटायर क्रू ऑफ सुर संगम, आप सभी को हम शामिल कर रहे हैं इन दिस नेक्स्ट ट्रैक. एन्जॉय.

0: हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: Rev those savings engines and rush into Briscoe's for huge half-price deal winners. All air fryers, duvet sheets, cookware sets, towels, RoboVacs and microwaves are half price. In Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island. Like whole chicken legs, $7.99 per kilo. Or Pam's stir-fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
5: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grow-A Basin Mixers, $149. American Standard Toilet Suite, $349. Luxury Clashish Wall Vanities, $399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
7: Make layovers something to look forward to with the American Express Gold Rewards Business Card. You can earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Plus, enjoy 2 priority pass visits each year in over 1,300 airport lounges worldwide. Search Amex Business and turn payments into points. Offer ends 14th of December 26, 1.5K minimum spend in the first 3 months. New Amex card members only. T's and C's for membership rewards and lounge exclusions apply. Priority pass enrollment required.
8: सबसे बड़े हिट गाने
9: ले ले तुम
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स रेडियो पब। हम पर आपके साथ हैं जिकाश।
10: 24 मिनट हो चुके हैं 1:00। हम पर रेडियो पब का कार्यक्रम जारी है एंड फिल्म डुग डुग, क्या आपने इसको देखा है? प्राइम पर ये फिल्म आई हुई है एंड आई वॉच्ड इट दिस वीक और क्वाइट सरप्राइजिंग, वेरी क्वेश्चनेबल, यू विल बी क्वेश्चनिंग रियलिटी। इस फिल्म को आप देखें, आई वोंट से कि बहुत ही लाजवाब मूवी है, लेकिन एक सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म है एंड आई वॉज बेफल्ड कि ऐसा कुछ भी हुआ है। नाउ इस फिल्म के बारे में अगर आप जानते हैं तो लेट मी फिल यू इन। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन ओम सिंह राठौर, ऑल्सो कॉल्ड श्री ओम बन्ना एंड बुलेट बाबा। अगर आप जोधपुर इंडिया से हैं, यू माइट नो अबाउट दिस इंसिडेंट फर्स्ट हैंड। एक बुलेट मतलब मोटरबाइक की पूजा की जाती है क्योंकि दिस इज़ ग्रांटिंग विशेस अकॉर्डिंग टू पीपल हु हैव बीन देयर एंड अकॉर्डिंग टू द भक्त्स ऑफ ओम बन्ना। नाउ आई वोंट से आई एम अ बिलीवर क्योंकि मैंने तो मूवी में देखा है एंड इफ़ यू आर फ्रॉम जोधपुर इंडिया एंड इफ़ यू नो अबाउट दिस, आपने फर्स्ट हैंड इस मंदिर को देखा है, इस बुलेट को देखा है, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। प्लीज कॉल मी ऑन 0800 004 866, चाहे ऑन एयर चाहे ऑफ एयर। जानकर अच्छा लगेगा कि ये कितना मशहूर है। ओम सिंह राठौर इज़ अ फोक डाइटी whose shrine and temple called Om Banna is located in Pali district near Jodhpur, India, devoted to him and his motorcycle. Ye located at 20 kilometers from Pali and 53 kilometers away from Jodhpur on the Pali-Jodhpur highway near Chotila village. Aur is bullet is motorbike ki puja ki jati hai. Kya aap yahan par gaye hain? Are you from Jodhpur? Have you traveled on the Pali-Jodhpur highway and have you passed the shrine? If yes, do call me on 0800 004866. Kuch baatein karenge.

एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है अबाउट मेंटल इश्यूज़ और किस तरह से आपको मदद मिल सकती है. When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 25 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand your language and culture. Now, launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health because a simple conversation can make a real difference. अगर आप या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है अबाउट मेंटल हेल्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कुछ जानकारी चाहिए यू नीड हेल्प तो एशियन हेल्पलाइन पर आप कॉल करें ऑन 0800-862-342. ये एक फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट लाइन है और इसके अलावा यू कैन गो ऑन टू द वेबसाइट asianfamilyservices.nz. इस पर विज़िट करें, यहाँ पर भी आपको हेल्प और जानकारियाँ मिलने वाली है.

0: inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines, plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
3: When customers are harder to win, visibility matters more than ever. If your signage is tired, unclear, or outdated, you're making it easy for people to walk on by. Speedy Signs helps businesses clean up their look with beautiful, professional signage that demands attention. From illuminated storefronts to full fleet graphics, they make sure people can see you, trust you, and remember you. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster.
4: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like New Zealand-grown loose pre-ripened avocados, a fresh deal at just 99 cents each. And Huggies Jumbo Nappies 64 to 108 pack, just $26.89 per pack. T's and C's apply.
5: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
6: Hey, still house hunting next weekend?
7: No, hopefully not. Going to an auction tomorrow.
6: Whoa, how did you sort things so quickly?
7: Oh, my BNZ home loan partner, Jane, met her last Saturday, got her home loan sorted and she's even calling tonight, so we're ready for the auction.
6: All that from one person.
8: Go direct to a BNZ home loan partner and deal with the decision maker from search to settlement. Bank of New Zealand. Let's find a way. All home loans are subject to BNZ lending criteria. Minimum equity requirements and terms and conditions. Up to a $150 establishment fee and other fees may apply.
9: Hi everyone. New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
10: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
11: The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari koi branch nahi hai.
11: Yo. Big Radio Pub.
13: रेडी पब का मजा आप ले रहे हैं. नाउ फादर्स डे, ये कब है भाई, कब है फादर्स डे, ये क्वेश्चन हम आपसे कर रहे हैं क्योंकि हर साल फादर्स डे मदर्स डे को लेकर कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं एंड लोग भूल जाते हैं कि सेकंड संडे को है या फर्स्ट संडे को है. मदर्स डे मई में होता है, फर्स्ट संडे या सेकंड संडे. फिर सितंबर में फादर्स डे आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन जब आप एक रोज़ एकदम से अलग कर देते हैं टू मेक योर डैड्स फील स्पेशल. तो कब है फादर्स डे? इज इट ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ सितंबर या फिर सेकंड संडे ऑफ सितंबर? ये जवाब हमें बताएं ऑन 5599 एंड हम देखना चाहते हैं कि कितना प्रिपेयर्ड आप है टू मेक योर डैड्स फील स्पेशल. और इसको लेकर दो कॉम्पिटिशन्स हमारे साथ में जारी है. आपको अपने फादर को इमेजिन करना है इन द फॉर्म ऑफ ए सुपर हीरो. सुपर हीरो क्या है, कौन है, ये तो आप सभी जानते हैं, हम सभी बनना चाहते हैं, लेकिन आपके लाइफ में आपके डैड इज़ द सुपर हीरो और उनको थ्रू AI आप री इमेजिन करें एज अ सुपर हीरो. चाहे शायद वो बहुत ही मसल वाले हैं, शायद ही इज़ अ कंप्यूटर फ्रीक, आई मीन इन अ गुड वे, और आपके सभी प्रॉब्लम्स को सट से वो सॉल्व कर देते हैं. तो इमेजिन योर डैड एज अ सुपर हीरो और थ्रू AI प्रॉम्प्ट्स उनका एक इमेज क्रिएट कीजिए। उस इमेज को आप जाकर हमारे फेसबुक पेज, सोशल मीडिया फेसबुक पेज डेड्स AI अपग्रेड वाले कंपटीशन के कमेंट सेक्शन में डालें एंड गेट योर डैड और टैग योर डैड एंड गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक दैट कंपटीशन दैट फोटो एंड द कंपटीशन पोस्ट। जितने भी लोग आपके डैड के फोटो को लाइक करेंगे मेक श्योर दे आर फॉलोइंग द हम फेसबुक पेज एंड दे ऑल्सो लाइक द कंपटीशन पोस्ट एंड इफ दे डू यू विल गो इन टू द ड्रॉ जहाँ पर 4th सितंबर को हम ड्रॉ करेंगे $300 कैश। गॉट इट? I think I have given you the answer for kab hai Father's Day. First Sunday of September ya phir second Sunday of September.

अपडेट्स आपको प्रदान करते चलेंगे अबाउट स्पोर्टिंग मोमेंट्स जो हो चुके हैं और होने वाले हैं लेट टुनाइट एंड टुमारो। आपने तो सुना कि ऑल ब्लैक्स आर टेकिंग ऑन द स्प्रिंगबॉक्स, ये होगा कल सुबह 10:03 क्योंकि साउथ अफ्रीका में होगा तो उनके वहाँ पर सैटरडे होगा, हमारे यहाँ पर संडे हो जाएगा। तो यू कैन हैव अ लेट स्टार्ट फॉर योर सैटरडे नाइट एंड जस्ट ओवरलैप that into early hours of Sunday morning when you can watch the movie, not the movie, the game between South Africa and All Blacks. Okay, a cracker of a match ye hone wala hai. South Africa are going to be tough. Ya phir aap subah jaldi utkar ye match dekhna chahe to do so. Kyunki South Africa aur All Blacks teen bar khelne wale hai, actually char bar khelne wale hai from today till 13th of September. And all these matches, well, three of these matches are happening early morning, 10:03. The last match, jo MNT Bank Stadium, Baltimore, mein hoga, 13 September ko, wo match hone wala hai 9 o'clock in the morning. So, first match, kal subah, 10:03. Second test match, 30th of August, subah, 10:03. And then 6th September, 10:03. All in Johannesburg, two in Johannesburg, one in Cape Town. तो क्या आपने इसके लिए तैयारी कर ली है? Have you got your squad together to watch the match? If you have, well, send us a message and we'll do a shout out to everyone listening right now. आइए शुरुआत करते हैं this hour की with this awesome track on Hum.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
3: At Bunnings, you'll find gifts built for Dad. Put a smile on Dad's face with a gift from Bunnings.
4: When Dads come in here, it's like a kid in a toy shop.
5: Dads love to shop at Bunnings. You know, there really is something for every dad. A new water blaster, a new drill, a new barbecue, lawn mowers, edges.
4: Any type of dad. Landscaper dad, builder dad, worker dad. And if they've got projects that they want to work on around the house.
6: Dads are always working on a project.
4: Bunnings is the best place to find a Father's Day present. Bunnings
3: Warehouse! Lowest prices are just the beginning.
7: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन-साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन-साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
8: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh Papatoi or Shri Prasad, Kelston.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
10: अच्छा
9: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
10: मिसेस सिंह
11: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहोहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz

Radio Pub. हम पर रेडियो पब का मजा आप ले रहे हैं एंड लेट मी जस्ट फिल यू ऑन एनपीसी. खेल जारी है बिटवीन टेस्मन एंड साउथलैंड. ये सेकंड हाफ में पहुंच चुका है टेस्मन लीडिंग बाय 17 पॉइंट्स टू 12. तो सिर्फ एक ही ट्राई का डिफरेंस है बिटवीन टेस्मन एंड साउथलैंड. इस पर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते चलेंगे राइट हियर ऑन 104.2 FM एंड ऑन रोवा.

0: भजन जेम्स लाइव ये आज होगा, लेकिन उससे पहले भजन की बातें चली, देयर इज अ सेंसिटिव टॉपिक जो एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम फिजी। फिजी में भजन लोग गाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। स्टेज शोज होते हैं, ये भी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ से लोग विस्तार सीखते हैं, कथाएं सुनते हैं एंड कुछ बातें जान जाते हैं जो शायद उनको पढ़ने से या फिर किताबों से नहीं मिली होगी। लेकिन कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजर्स ऐसे हैं जो भजन के नाम पर बस गंदगी फैला रहे हैं। स्टेज पर ऐसे आर्टिस्ट आ गए हैं जो भजन के बदले बस नोक झोंक, तू तू मैं मैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना अपशब्द गाते हैं। एंड जितना फॉल्ट, जितना रिस्पॉन्सिबल वो आर्टिस्ट है फॉर द डाउनफॉल ऑफ फिजी भजन्स, उतने ही रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं जो ऐसे भजन को बढ़ावा देते हैं, सुनने के लिए जाते हैं। अगर आप ऐसे कोई शख्स है जो भजन के नाम पर ये हॉट भजन मुकाबला सुनते हैं, व्हाट इज़ हॉट भजन मुकाबला, कवाली सुनना है तो कवाली सुने, प्लीज़ डू नॉट प्रमोट वल्गैरिटी इन द नेम ऑफ भजन। भजन बहुत ही सेक्रेड है इन द हिंदू धर्म, तो भजन को भजन ही रहने दे। अगर तू तू मैं करना है, नोकझोंक करनी है और एक दूसरे को नीचा दिखाना है, भाई फाइंड सम प्लेस एल्स, सम पोडियम अवे फ्रॉम भजन, इसको आप कुछ और नाम दे दे और फिर ऐसे कलाकारों को बिठाए जो भजन के बदले बस अपशब्द गाते हैं, ऐसे ऑडियंस को वहाँ पर लाए जो भजन के नाम पर बस वल्गैरिटी और एंटरटेनमेंट चाहते हैं। डू नॉट एसोसिएट सच थिंग्स विद भजन्स, क्योंकि आज एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है जिसका नाम है भजन जेम्स। एंड आज रात 7 पर वैदिक सेंटर पर 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोडे में, अगर आप सही मायने में भजन कीर्तन सुनना चाहते हैं कि ये होता क्या है, किस तरह से आपको कनेक्ट करता है टू दी हायर पावर, यू हैव टू बी एट वैदिक सेंटर टू नाइट एट 7 PM 32 ग्लासगो एफ पापाटोडे में। टिकट्स है $30। एक तो आप बहुत ही उच्च कोटि के कलाकारों से भजन सुनने वाले हैं, ट्रेडिशनल डिवोशन ब्रॉट टू लाइफ थ्रू कंटेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स, टैलेंटेड वोकलिस्ट्स एंड अकम्प्लिश्ड म्यूजिशंस, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत गई है। एंड दिस इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड एंड क्यूरेटेड बाय NZ कल्चरल ट्रस्ट, और ये स्पेशल इवनिंग इज बीइंग हेल्ड इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी। एक तो आप बहुत ही दिल को छूने वाले और डिवाइन फील कराने वाले भजन्स को सुनेंगे, एंड वाइल यू आर देयर यू विल बी हेल्पिंग द गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी ऑर्गेनाइजेशन, जो बच्चों, छोटे बच्चों की मदद करती है, दोज हु आर बोर्न विथ हार्ट डिजीजेस, तो इनके लिए सर्जरीज, इनके लिए टेस्ट स्कैंस ऑर्गेनाइज करती है। बाय जस्ट बीइंग देयर परचेसिंग द टिकट यू विल बी हेल्पिंग टू सेव अ लाइफ इन फिजी। तो आज आपको जाना है 32 ग्लासगो एफ पावटोटोए में, जहां पर भजन जेम्स, इसका भरपूर आनंद लेना है। टिकट्स आई एम नॉट श्योर कि कितने बचे हैं, यू कैन हेड टू जेस फ्रेश मार्ट या फिर वैली फ्रेश, शिव प्रसाद केल्सन आप जा सकते हैं, या फिर गो टू eventbrite.co.nz और वहां जाकर अपना टिकट्स आप रिजर्व कर लें।
1: You're listening to Chikash.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: सर्दी खांसी जुखाम क्या ये आपके आसपास भी घूम रहा है? Have you noticed it a bit more this year? No, it isn't just you. इस साल रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं. कैसे रिकॉर्ड्स? Well, Healthline calls in reinforcements amid biggest flu outbreak in 10 years. Healthline, they have called in reinforcements क्योंकि they cope नहीं कर पा रहे हैं इतने सारे flu outbreak cases. देखने को जो आ रहे हैं, फ्लू रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशंस आर एट ए 10 ईयर हाई इन ऑकलैंड एंड नेशनल इन्फेक्शन रेट्स एट अ 4 ईयर हाई एंड राइजिंग. तो भाई अगर आपको भी बहुत ज़्यादा खांसने छींकने वाले लोग नज़र आ रहे हैं, वेल दैट इज़ बिकॉज दे आर रियली सिक, एज इन नॉट रियली सिक, फ्लू is on the rise. Health Institute Chief Executive Dale Bramley, इनका कहना है कि the entire health system was under pressure with the spike being driven by influenza A along with cases of RSV, cold viruses and some COVID-19 cases. Touchwood.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: अटेंशन एवरीवन हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
3: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
3: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
2: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ

0: आपको मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल. रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स. PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर.
1: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
2: Flooring Extra. Adore your floor.
3: Bunnings has great value nailed across the store.
4: Get your garage sorted with a Stanley 17 compartment storage organiser 1018 or a Command 1.8kg broom holder just $9.98. Head in store or online for even more great value. Bunnings
5: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
7: And award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
8: Kahani of Indelible Homes.
9: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के.
10: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
11: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
10: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. रेडियो हब.
12: Kia ora and welcome back to Radio Pub, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. Now, इस घंटे पर I'll be talking about a game जो बहुत ही मायने रखती है for us here in New Zealand. And if you follow this game, you might already know all the rules and things associated with the game. लेकिन if you are someone new to rugby league, आपसे हम पूछना चाहते हैं. आपने शायद इस मैच को देखा है लेकिन कभी नोटिस नहीं किया कि फील्ड पर कितने प्लेयर्स रहते हैं. तो सवाल है फॉर दिस आवर कि एक रग्बी लीग मैच में एक टीम के कितने प्लेयर्स फील्ड पर रहते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोथ टीम्स. फ्रॉम वन टीम नेशनल रग्बी, नॉट नेशनल रग्बी लीग, रग्बी लीग मैच में एक टीम के कितने प्लेयर्स खेलते हैं एट वन टाइम. I'm not talking about reserves, the number of players playing on field from our team in a rugby league, कितने हैं. 5599 पर आप हमें जवाब दे सकते हैं with your name. Do let me know कि आप कहाँ पर है, जानकर अच्छा लगेगा. If you are listening to us on Rova, तो do let me know कि किस region में हैं आप. Are you in Auckland, are you upper north area, या फिर आप South Island में हैं. I'll be glad to know. तो बताएं नेशनल सॉरी रग्बी लीग में एक समय पर एक टीम की कितने खिलाड़ी खेलते हैं इन अ मैच. 5599 पर अपना जवाब भेजो. वैसे नेशनल रग्बी लीग इस सप्ताह हैज़ गॉन इनटू वीक 25 ऑफ 27. टू मोर वीक्स एंड देन वील गेट इनटू द फाइनल्स. तो इस सप्ताह थर्सडे को गेम हुआ पैंथर्स और स्टॉर्म के बीच में. पैंथर्स 22 स्टॉर्म 14. रेडर्स की हार हुई एट द हैंड्स ऑफ ब्रोंकोस

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: किसी ने लिखा है कि 15 प्लेयर्स ऑन फील्ड फ्रॉम आवर टीम, नो देयर इज नॉट राइट। तो जैसे कि मैंने कहा, रग्बी लीग एंड रग्बी यूनियन देखने में कभी कभी ऑन टीवी इट वुड लुक द सेम, बट इट इज़ नॉट, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। हाँ, दोनों रग्बी ही है, लेकिन रग्बी यूनियन में 15 प्लेयर्स फीचर होते हैं फ्रॉम वन साइड, फ्रॉम वन टीम। लीग में कितने प्लेयर्स होते हैं? एंड इट्स नॉट 15। तो रिसर्च कीजिए इसके बारे में एंड सेंड योर आंसर्स टू 5599 विथ योर नेम्स।

हसल 2.0 के कंटेस्टेंट पैंथर यानी कि अनुभव शुक्ला की आवाज़ आपके लिए हम शामिल कर रहे थे। हसल 2.0 वाज अ सीज़न जो मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन वाज द बेस्ट सीज़न फॉर हसल। अभी हसल 5 ये जारी है एंड आई थिंक इट विल बी द फोर्थ एपिसोड कमिंग आउट टुमारो ऑन नेटफ्लिक्स एंड देन द अदर एपिसोड इज कमिंग आउट ऑन मंडे 23rd और 24th को। और इट इज़ डूइंग गुड। इस साल भी कभी काफ़ी प्रोमिसिंग कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं। द गुड थिंग अबाउट दिस ईयर इज़ एमसी स्क्वेयर एंड पैराडॉक्स, दे आर द टीम मास्टर्स, टीम लीडर्स हैं और अपने चार चार इन्होंने कंटेस्टेंट्स लिए हैं एंड दे आर बैटलिंग इट आउट। लेकिन 2.0 हसल 2.0 वाज मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट हसल सीजन्स एवर। आइए शामिल कर लेते हैं इस अगले गीत में पामस्टन नोट से। आशिका जी है, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड प्रमोद, आपका भी सही जवाब आया है। सिर्फ दो ही सही जवाब आए हैं अभी तक। लोग सोच रहे हैं कि रग्बी लीग में 15 प्लेयर्स खेलते हैं एक टीम की ओर से। नो, इट इज़ नॉट।

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: इस साल प्रिडिक्ट किया गया है, फिर फोरकास्ट किया गया है कि एल नीनो के चलते वी विल बी एक्सपीरियंसिंग मोर देन ओ रदर ड्रायर देन नॉर्मल कंडीशंस ड्यूरिंग आवर स्प्रिंग एंड समर। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि विल देयर बी वाटर रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो ड्राई स्पेल्स ये हम एक्सपीरियंस करेंगे, उस समय वाटर रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं क्योंकि डैम्स के लेवल ये कम होने लगते हैं। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है एट अ ग्लांस, ऑकलैंड वाटर सप्लाईज इट्स इन गुड शेप हेडिंग इनटू समर। ऑकलैंड काउंसिल्स पॉलिसी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी दे हैव अप्रूव्ड वाटर केयर्स अपडेटेड ड्राउट मैनेजमेंट प्लान which outlines how Auckland will prepare and respond to extended dry periods. The move comes as El Nino is expected to bring drier than normal conditions to Auckland over spring and summer. So at a glance, Auckland's water storage is currently at 94% full. Storage levels are almost 10% above the historical average for this time of the year, and water restrictions are unlikely this summer. Lekin agar aap pani barbaad karoge, to shayad restrictions lane padenge. तो अभी समय चलते जितना बचा कर आप पानी इस्तेमाल करें उतना ही बढ़िया है। एक तो यू विल बी सेविंग ऑन दी वाटर एंड वाटर लेवल्स कम नहीं होंगे इन द डैम्स, एंड आपके वाटर बिल्स भी कम होंगे। अगर आप शावर करते हैं तो गैस बिल्स कम होंगे, अगर गैस फायर्ड वाटर हीटिंग आपके घर पर है, अगर इलेक्ट्रिसिटी से आपके घर पर पानी गर्म होता है, तो आप अगर आप अपना शावरिंग टाइम आधा कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो आधे घंटे तक नहाते हैं, आई डोंट नो क्यों करते हैं, बट करते हैं, अपने अपने शौक होते हैं। अगर आधे घंटे से 15 मिनट कर दोगे तो 15 मिनट का पानी, 15 मिनट का इलेक्ट्रिसिटी, 15 मिनट का गैस आपका बच जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आई एम अ होम ओनर एंड आई नो दीज कॉस्ट्स। और कल मैं अपना सिटी रेट भर रहा था एंड एक रियलाइजेशन हुआ, इन 6 ईयर्स माई रेट फॉर माई हाउस हैज़ डबल्ड। Has this is this the case with you as well? सवाल हमने किया है कि रग्बी लीग में एक टीम की ओर से कितने प्लेयर्स रहते हैं इन ग्राउंड। पलक, थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए। किसी और ने भी जवाब दिया है लेकिन नाम नहीं लिखा है। प्लीज सेंड मी योर नेम्स और कहां पर हैं आप।

Netflix पर ऑपरेशन सफ़ेद सागर, इसको आपने चेकआउट किया है? इफ नॉट यू मस्ट, क्योंकि दिस सीरीज इंटरवाइंस या फिर इंटरटवाइंस विद अ लॉट ऑफ इंडियन आर्मी मूवीज जो आपने देखी है. दिस इज़ अबाउट द इंडियन एयरफोर्स और कैसे दे हैव हेल्प्ड द ट्रूप्स ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग द कारगिल वो. शेरशाह आपने देखी है? वेल, शेरशाह वॉज ऑन ग्राउंड, दिस इज़ फ्रॉम द एयर. तो एक ही कहानी के अलग पहलू इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा. जिमी शेगल इसमें नज़र आए हैं एंड अ ग्रेट कास्ट मैं कह सकता हूँ. अभय वर्मा, इफ़ यू नो अभय वर्मा, ही इज़ फ्रॉम द मूवी जो आई थी, अभी मैं नाम भूल गया, हाँ मुंजिया. मुंजिया में नज़र आए थे शर्वरी वाघ के संग में. बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है. इसके साथ में साउथ के सिद्धार्थ, इनको आप देखेंगे. जिमी शेगिल है, प्रजक्ता कोहली है, दिया मिर्जा है, मिहिर आहूजा, ही इज़ इन अ वेरी ऑसम रोल इन दिस वेब सीरीज. तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर, इट्स डूइंग रियली वेल, काफ़ी हाईली वॉच्ड सीरीज़ ये रही है. एंड मनु ऋषि he has played the role of Parvez Musharraf in Operation Safed Sagar. To kafi behtareen tareeke se is web series ko shoot kiya gaya hai. Check it out on Netflix.

0: Radio Pub.
1: हम पर रेडियो पब का मज़ा आप ले रहे हैं। समय मिला लीजिएगा, 14 मिनट रह चुके हैं 4 बजने में। कार्यक्रम में और भी आगे बढ़ते हैं। एंड हैव यू टिल नाउ गॉटन योरसेल्फ ऑन द लिस्ट टू गेट टू वनुआतु? मतलब क्या आपने हमारा हम बोर्डिंग कॉल सुना है? एंड आपने सुना है, हैव यू गोन टू रोवा एंड रजिस्टर योरसेल्फ इन द कॉम्पिटिशन? अरे भाई नहीं तो क्या कर रहे हो। एवरी वीकडे सुबह 8, सुबह 11, दिन में 1 और शाम 5 बजे हम बोर्डिंग कॉल हम अनाउंस करते हैं। एज सून एज यू हियर इट, यू गॉट 60 मिनट्स, एक घंटा आपके पास टाइम है। हमने आपके लिए बहुत ही आसान किया है। जैसे ही आप सुने, टेक योर टाइम, पर ज़्यादा नहीं, एक घंटे के बीच आप रोवा पर जाए एंड क्लिक बोर्ड नाउ, टाइप बोर्ड नाउ एंड सबमिट अंडर द बोर्डिंग कॉल कॉम्पिटिशन, एंड जस्ट लाइक दैट You will be in the draw, जहाँ पर you will win an unforgettable Vanuatu getaway. एक नहीं दो tickets दे रहे हैं, you and your loved one off to Vanuatu, plus $1,000 spending money. और क्या चाहिए भाई? Rova, ROVA लिखकर भेजे 5599 पर, you'll get the link to download Rova. अभी download करो और register करो और Monday morning 8 AM get into this draw. आपके पास मौका है। इफ़ आई हैड द अपॉर्चुनिटी आई वुड बी एंट्रिंग एट एवरी अपॉर्चुनिटी, 8 AM, 11 AM, 1 PM, 5 PM, एवरी डे। तो याद रखो, अलार्म लगा लो एंड एज़ सून एज़ यू हियर द बोर्डिंग कॉल आप कॉम्पिटिशन में शामिल हो जाओ। BC लिखकर भेजे, BC बोर्डिंग कॉल BC लिखकर भेजे 5599 पर। कॉम्पिटिशन पेज लिंक आपको भेजेंगे, जहाँ पर जाकर आप बोर्ड नाउ टाइप कर सकते हैं as soon as you hear our boarding call.

0: weather update.
1: Let's have a quick look at the weather in store. आज तो बारिश आज के लिए हो चुकी है, लेकिन बादल छाए रहेंगे और ओवरनाइट टेम्परेचर आज 9 डिग्रीज रहने वाला है. सनसेट 5:53 पीएम पर होगा एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि अब अंधेरा ये देर में होता है. संडे कल के लिए बताया गया है कि सुबह बादल छाए रहेंगे, रेन एट टाइम्स इन द इवनिंग. तो कल थोड़ी मोड़ी बारिश हो सकती है. नॉर्थ वेस्टर्लीज कल दिन में टेम्परेचर 18 डिग्रीज जाएगा. ओवरनाइट टेम्परेचर फॉर संडे विल बी 10 डिग्रीज. चार बजकर 3 मिनट हो चुका है. मैं हूं जिकाश, रेडियो पब में आप सभी का दोबारा स्वागत कर रहा हूं. इफ़ यू हैव जस्ट ज्वाइन, आप सभी का दिल इस्तकबाल कर रहा हूं ऑन द एयर वेव्स ऑफ 104.2 FM एंड ऑन रोवा नेशनल प्रोविंशियल

Yo. Big Radio Pub. All right, तो AFC Champions League के तहत जो फाइनल हो रहा है फिजी में अम्बा में ऑकलैंड सिटी और सेंट्रल कोस्ट के मध्य में 53 मिनट्स इनटू द मैच मतलब सेकंड हाफ का मैच शुरू ही है हुआ है थोड़ी देर पहले एंड बोथ टीम्स आर लॉक्ड इन एट नील ऑल. इसे अगर आप लाइव देखना चाहे गो टू dazn.com या फिर फीफा प्लस आप सर्च करें. फीफा प्लस इज नाउ featured through या फिर brought to you through DAZN website DAZN.com. वहाँ जाकर आप अपना ईमेल डालकर आप अपने आप को रजिस्टर करें. दे आर पैकेजेस जहाँ पर सब्सक्राइब करने के लिए वो कहेंगे डोंट डू दैट. दे आर अ लॉट ऑफ गेम्स जो फ्री टू एयर है जो लाइव आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग द वन दैट्स गोइंग ऑन नाउ ऑकलैंड सिटी वर्सेस सेंट्रल कोस्ट हैपनिंग इन बा फीजी. इट्स लाइव ऑन DAZN.com बिल्कुल मुफ्त में. सवाल हमने किया था पिछले घंटे पर कि 15 रग्बी लीग में कितने प्लेयर्स होते हैं इन अ टीम ऑन द फील्ड. 13 प्लेयर्स फ्रॉम ईच टीम एट अ टाइम.

हम पर रेडियो पब का मजा ले रहे हैं एंड आई वाज जस्ट चेकिंग आउट द मैच दैट्स हैपनिंग बिटवीन ओकलैंड सिटी एंड सेंट्रल कोस्ट. वेल एज वी मोस्ट ऑफ अस वांटेड, ओकलैंड सिटी हैज गोन अप बाय 1-0 एंड इट्स 72 मिनट्स इनटू द मैच सेकंड हाफ में. तो कह सकते हैं कि 20 मिनट बाद पता लग जाएगा कि इस गेम में विजेता कौन होता है. 1-0 इज नॉट अ ग्रेट स्कोर, लेकिन इफ दे If they manage to keep it at that, then Auckland City might just be the winners for this match. Auckland City versus Central Coast Football Club, OFC Champions League 2026 mein final ka khel jari hai Govind Park Mba mein.

0: Yo.
1: Radio Pub.
2: Hey, welcome back to Radio Pub, jahan par main Jikash aapka saath de raha hoon. Now, I'm from Tavua in Fiji, and if you are from Tavua and you love soccer, to you should be more proud. आप तो जानते हैं कि तावा कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है दैट हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ ग्रेट सॉकर प्लेयर्स इन फिजी. हाँ, ये टिकते नहीं है तावा में क्योंकि तावा में जो अपॉर्चुनिटीज कम है, तो अदर टीम्स लाइक बा लोटोका नांदी दे पाउच प्लेयर्स फ्रॉम तावा एंड वी डोंट रिग्रेट एनीथिंग क्योंकि द प्लेयर्स गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज, दे मेक अ लिविंग आउट ऑफ फुटबॉल टू सम एक्सटेंट. लेकिन अभी तावा कॉलेज आज अंडर 19 फाइनल में क्वालिफाई हो चुका है. दे हैव बुक देयर प्लेस इन द अंडर 19 फाइनल ऑफ द एक्स्ट्रा फिजी सेकेंडरी स्कूल्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 आफ्टर एन इम्प्रेसिव 3-0 विक्ट्री ओवर गुरु नानक खालसा कॉलेज इन द फर्स्ट सेमीफाइनल जो आज सुब्रेल पार्क लंबासा में हुआ. तो kudos to the management and the soccer officials of Tawa College and all the best for the finals.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: पांच बज चुके हैं, मतलब कि इन द फाइनल आवर ऑफ रेडियो पब हम और आप प्रवेश कर चुके हैं। इफ यू हैव जस्ट जॉइन, आपको हम बता दें कि जो खेल हो रहा था ओएफसी मेंस चैंपियंस लीग में बिटवीन ऑकलैंड सिटी फुटबॉल क्लब एंड सेंट्रल कोस्ट फुटबॉल क्लब इन फिजी बा गोविंद पार्क में ये खेल हुआ, समाप्त हो चुका है। राइट नाउ इंटरव्यू हो रहा है सेंट्रल कोस्ट फुटबॉल क्लब के कोच से एंड बंदा बहुत ही दुखी है, बस आंसू नहीं निकल रहे हैं। मतलब ऑकलैंड सिटी फुटबॉल क्लब हैज़ कम आउट विक्टोरियस, जैसा कि मोस्ट ऑफ अस चाहते थे। तो अगेन अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑकलैंड सिटी फुटबॉल क्लब एंड अ पैट ऑन द बैक टू ऑल द फैंस एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑकलैंड सिटी एफसी कमिंग आउट विक्टर्स इन दिस ईयर्स 2026 मेंस चैंपियंस लीग अंडर द ओशियानिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Alright, let's go to Fiji, जहाँ पर not go to Fiji, वहाँ का न्यूज लेकर आया हूँ. Fiji Football Association का पेज मैं देख रहा था and extra Fiji Secondary Schools Football Championship आज फाइनल्स खेले जा रहे हैं एंड आज सुबह आफ्टर डिफीटिंग खालसा कॉलेज तावा कॉलेज वेंट इनटू द फाइनल एंड अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनल मैच ये ख़त्म हुआ है एंड तावा कॉलेज has got the grasp of this match kyunki at half time Tawa College is leading by 2-0. Lambasa ke home ground mein Tawa College hara raha hai. Tawa College doubles its advantage and is now 2 up against Lambasa in the under 19 final of the extra Fiji Secondary Schools Football Championship 2026. Tawa seems to be in control of the final. Dekhte hain ki kya hota hai baad mein chalkar. And on the same note, Open Girls Champions, well, that too, Tawa College द्वारा जीता गया है. तो गर्ल्स डिवीजन में भी ओपन गर्ल्स चैम्पियंस आर नन अदर देन Tawa College. Congratulations to the players, coaches, officials and the entire Tawa College family on a memorable championship victory. More reasons to be proud of being for being from Tawa.

हम पर रेडियो पब का मजा आप ले रहे हैं एंड जस्ट फिलिंग यू इन अबाउट द ओएफसी मेंस चैंपियनशिप लीग 14th ओएफसी मेंस चैंपियनशिप लीग चैंपियंस लीग दिस इज द 14th क्राउन फॉर ओकलैंड एफसी 14 बार आज को मिलाकर ओकलैंड एफसी ये खिताब अपने नाम कर चुकी है एंड आज का विन वाज ट्रूली स्पेशल इन फिजी जहां पर गोविंद पार्क बा में ओकलैंड सिटी फुटबॉल क्लब ने सेंट्रल कोस्ट फुटबॉल क्लब को 2-0 से पराजित किया है और इधर तावुआ कॉलेज के बारे में हम बता रहे थे सेकंड हाफ का मैच बस शुरू ही हुआ है स्टिल तावुआ कॉलेज अप बाय 2-0 लंबासा कॉलेज को हरा रही है एंड पीटानंद आपका मैसेज आया थैंक यू सो मच एक्स तावुआ प्राइमरी 1968 आपने वहां पर पढ़ाई की एंड 1981 में तावुआ कॉलेज में थे आप ड्रॉप आउट वी वेयर एट टॉप इन सोका बैक देन एज वेल यस शेयर द सेम सेंटिमेंट्स जैसे कि मैंने कहा वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स जो प्रोड्यूस करती है बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हु डोंट स्टे इन तावुआ लेकिन देश भर में फिजी में अपना नाम रोशन करते हैं तो हैट्स ऑफ टू ऑल द तावुआ पीपल आउट देयर अगर आप भी तावुआ से हैं फ्लिक मी अ मैसेज ऑन 5599

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: You filled the pinata before I sealed it, right?
4: No, you did.
3: Oh, I thought you did.
4: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
5: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन। प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर, तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए। हरी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर ऑकलैंड।
6: Kia ora. If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours.
7: Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
8: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
9: Kabhi bhi, kahin bhi. Mast Malang jo.
10: Yo.
9: Big Radio Pub.
11: Hey, what's up? Welcome back to Radio Pub. मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. A lot is happening in the sporting world, क्योंकि अभी खेल जारी है between Knights and Sea Eagles in week 25 of 27 in NRL, और उसके बाद 7:30 PM पर Rabbitohs और Warriors आमना सामना करने वाले हैं. This is happening in Australia. Sydney, Australia में ये खेल खेला जाएगा, तो इसे भी आप enjoy कर सकते हैं live on Sky. Apart from that, थोड़ी देर में NPC के अंतर्गत the next match 5:35 PM शुरू हो जाएगा. In a few minutes, North Harbour और Auckland के मध्य में this will be on TV, जो आप live देख सकते हैं.

0: not happening.
1: You're listening to Chikash.
2: Alright, it's time for me to shoot off from here. बहुत ही अच्छा लगा आज दिन में 12 से आपने हमारा साथ दिया. I hope आपने भी कार्यक्रम को इतना ही enjoy किया है. बाकी के अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे थ्रू आवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पोस्ट. तो कीप अ टैब ऑन दैट. जो जो खेल हो रहे हैं उसके फाइनल रिजल्ट्स या फिर हाफ टाइम रिजल्ट्स जिस जैसे मौका मिलेगा मुझे आई विल बी अपडेटिंग दैट. तो वहां पर भी जाकर आप चेकआउट करते रहे. डू ड्रॉप कमेंट्स जो आप सोचते हैं इस गेम के बारे में. लाइक करें एंड जब आपके लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं हमें और भी प्रोत्साहन मिलता है टू डू इवन मोर फॉर यू गाइज आउट देयर. तो कीप हमिंग, कीप सपोर्टिंग अस. और यूं ही नहीं हम नंबर वन बने हैं आपके प्यार के साथ में नंबर वन बने हैं. GFK सर्वे अभी हाल ही में हुआ है एंड वंस अगेन वी हैव कम आउट एज द बेस्ट हिंदी रेडियो स्टेशन ऑफ न्यूजीलैंड. तो अपना प्यार हमें आप देते रहे और यूं ही आपके लिए हम एक से एक बढ़कर कार्यक्रम इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे और यूं ही एक दूसरे का साथ देते हुए वी विल ऑल बी विनर्स एट द एंड ऑफ द डे. जो भी आप चाहते हैं, जो भी हम चाहते हैं, लेट्स गेट दैट डन, लेट्स अचीव दैट बाय बीइंग देयर फॉर ईच अदर. मिलते हैं हम आपसे अब कल शाम 6 पर इन संडे नाइट मेलोडीज. मैं जिकाश आपका साथ देने के लिए फिर से आ जाऊंगा और आपके वीकेंड को एक हसीन सा कंक्लूजन देने के लिए आप हमारे साथ फिर से जुड़ जाइएगा टुमारो नाइट फ्रॉम 6 PM इन संडे नाइट मेलोडीज. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें. हैव अ ग्रेट सैटरडे नाइट एंड अ ग्रेट संडे टुमारो. मिलते हैं कल शाम 6 पर. आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
9: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
10: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
11: Rebel's taking it back to 96 with our big birthday blowout. We're celebrating 30 years with up to 30% off store-wide. That's up to 30% off clothing, footwear and equipment. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
12: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island. Like whole chicken legs, $7.99 per kilo. Or Pam's stir-fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
13: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoy. Tickets sir, $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoy, or Shu Prasad, Kelston.

0: मीडिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
5: Rev those savings engines and rush into Briscoe's for huge half-price deal winners. All air fryers, duvet sheets, cookware sets, towels, robovacs and microwaves are half price. In Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
6: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Oakland.
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high quality standalone and terraced houses. We're one of the award winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। ये है सैटरडे बॉलीवुड बज़।

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku. चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स. सेलेक्टेड नए ओमुडा और जेकू मॉडल्स पर पाइए 3.9% फाइनेंस या $2,000 कैशबैक. प्रीमियम डिजाइन, टेक्नोलॉजी और जबरदस्त वैल्यू. सुपर हाइब्रिड

0: 31st. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
2: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी डिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है. We gotta go.
2: Are you ready? Come and take a trip with me.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
4: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
4: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
6: डिब्बा खुल गया
7: भरत भाई, टिफिन खुल गया छे. संजना का डिब्बा खुल गया.
8: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा. फिर यही तो होगा,
7: डिब्बा खुल गया.
8: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले. बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very
2: acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my fancy
3: say.
2: English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: जोगी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
3: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
6: हेलो एवरीबॉडी।
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
9: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
10: Join the Tribe!
9: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
10: join the Tribe!
11: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
1: The DJ mix only on Hum.
12: रैम्बो सुने हम तुम्हारा।
13: अबे वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है और ब्रूस्टी का नाना है। लास्ट एक्शन हीरो वो।

0: ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: Rev those savings engines and rush into Briscoe's for huge half-price deal winners. All air fryers, duvet sheets, cookware sets, towels, RoboVacs and microwaves are half price. In Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: A safe night can change everything. That's why Contact donates the energy to power Women's Refuge. This winter, when you donate a safe night for someone seeking safety, we'll match it up to 5,000 nights. Donate now at safenight.nz.
4: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi or Shiv Prasad, Kelston.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ,
6: अच्छा
5: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह,
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800 233 111. Indelible Homes, your building expert.

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है. कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट.
6: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
7: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
6: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
8: हम

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: flight on Hum.
1: Attention everyone, Hum Boardroom ab officially session mein hai aur is baar annual performance review ke liye aapke sibling hai hot seat par.
2: Kya aapke bhai ne bina puche kapde borrow kiye hain?
1: Kya aapki behan ne kabhi aapki mummy banne ki koshish ki hai?
2: Ya phir har mushkil waqt wo aapke sabse bade critic ya supporter bane hain?
1: Is Raksha Bandhan apne sibling ko le aaiye Hum Boardroom mein. Unki khichai kijiye, tareef kijiye, purane hisab clear kijiye aur celebrate kijiye wo bond jo sirf bhai बहन समझ सकते हैं.
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल.
0: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स. PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.

0: उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनानास चाइल्ड केयर, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे। विद 21 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड हैमिल्टन, ये हमेशा आपके पास है। गो बनानास चाइल्ड केयर ब्रिंग्स यू अ क्रेजी ऑफर विद 6 मंथ्स कंप्लीटली फ्री एंड द फॉलोइंग 6 मंथ्स 50% ऑफ ऑन फीस फॉर ऑल एजेस। ऑफर एंड्स 30th सितंबर। लिमिटेड स्पेसेस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800 46 26 26 26 टुडे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं, तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz। दैट्स commonwealthvault.co.nz।
3: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
4: Their masalas are ground fresh in-house every single day.
3: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
4: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
3: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
5: Playing Bollywood's biggest hits.
6: Budget gaane.

0: यार याद आ गई अपने दोस्तों की,
1: वो बचपन के दोस्त।
2: अजाने क्यों ये दूरियां बढ़ गई।
1: कई बार आपको लगता है कि मेरी गलती थी ही नहीं, उसी की गलती थी।
0: सच बताऊं, सही लगता है
3: उसी की ही तो गलती थी
2: काफी हद तक, लेकिन थोड़ी गलती तो आपकी भी थी।
1: तो इसीलिए फोन उठाओ
0: और अभी इसी वक्त उनसे बात करो,
2: वरना कहते रह जाओगे।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Playing Bollywood's biggest hit.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए Night Flight.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
3: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
4: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
5: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
4: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

कपि हैं, ये जो हनुमान हैं, इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं उनसे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। कपि से उऋण हम नाहीं, भरत भाई कपि

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम। There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
8: डिब्बा खुल गया।
9: भरत भाई, टिफिन खुल गए छे।
10: संजना का डिब्बा खुल गया।
11: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा, डिब्बा खुल गया। हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
13: हाँ। अच्छा
12: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साडा कुछ नहीं।
13: मिसेस सिंह,
14: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
15: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑकलैंड. स्वागत है आपका यहाँ हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे. मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ और आपका और मेरा जो ये सफ़रनामा है ये चलेगा अगले 6 घंटे. करेंगे हम बहुत सारी बातें और प्यारे प्यारे गाने आपके लिए बैक टू बैक.
1: Now listen. Get up. That's right.

0: Dancing foreign style.
1: Slow down, boys.

सो प्यारे प्यारे गानों के साथ बात करते हैं आसपास क्या चल रहा है। अभी आसपास ऐसा है कि इस वीक, इस पूरे सप्ताह मौसम इतना ज़्यादा सुहाना था, द वेदर वाज सो अमेजिंग कि मैं वीकेंड का वेदर चेक करना भूल गई। लेकिन वीकेंड आते ही क्या हो जाता है आपको पता है, बारिश होनी शुरू हो जाती है, तूफान आने लगते हैं। ऑकलैंड में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, पूरे न्यूजीलैंड की हालत ख़राब हो जाती है वीकेंड पे। एंड देन अगेन व्हेन यू आर बैक टू वर्क ऑन मंडे, देखो ये चीज़ जो है ना ये पेन देता है हम सबको। जब आप ऑफिस में बैठे होते हो और बाहर एकदम बहुत सनी सा वेदर जो है ऑकलैंड में है, अगर आप ऑकलैंड में या जहाँ पर भी आप रहते हैं काम करते हैं, ये बहुत दर्द देता है, मुझे बहुत दर्द देता है ये। और इस सप्ताह जो है मुझे वीकेंड से थोड़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं यार, एक्सपेक्टेशन थी जो कि मैंने शायद गलत किया। बट आपका क्या हालचाल है? अगर आप बीमार पड़ चुके हैं अभी तक या पड़ रहे हैं तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा नॉट एग्जैक्टली ट्रीटमेंट एंड ऑल, बट मैं बातें कर सकती हूँ अबाउट हाउ यू कैन कम आउट ऑफ दिस वायरल जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है न्यूजीलैंड में। स्टे ट्यून्ड।

0: Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।

इस बार मुझे न्यूज़ जो है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस मैटर पे, इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए कि इस बार का जो हमारा ये वायरल फ्लू फीवर जो विंटर में चल रहा है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इतना ज़्यादा है कि प्रेशर हमारे हेल्थ सिस्टम पे बहुत ओवर हो चुका है। खैर प्रेशर तो बहुत सालों से चल रहा है जिसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकाला जा रहा, बट प्रेशर हैवी है एंड सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि लोग इन्फ्लुएंजा से सफ़र कर रहे हैं। नाउ इन्फ्लुएंजा इज़ डिफरेंट टू नॉर्मल सर्दी खांसी जो किसी को भी हो सकती है, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा खांस रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके ज़रूर दिखाएं। ये ना सोचें कि ये बस एक वायरल है जो 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा, बिकॉज इस चीज़ के थ्रू मैं लास्ट ईयर जा चुकी हूँ, इसीलिए मैं ये ज्ञान जो है ये आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंटली दे रही हूँ। साथ में चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा ठीक अगर आप बेटर फील कर रहे हो तो ये मत सोचना कि बिल्कुल आप 30 मार्खा अभी बन चुके हो और आउट एंड अबाउट होना शुरू हो जाना, ये सब मैंने काम करे हैं और वापस से ये जो भी वायरल और इन्फ्लुएंजा या वट एवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ इन न्यूजीलैंड इसने मुझे हिट किया है, ये मेरा पर्सनल जो है क्या बोलते हैं यार प्लिया है सबसे कि अगर आप बीमार हैं, हो चुके हैं या ऐसा लग रहा है होने वाले हैं, प्लीज़ रेस्ट करें, अपनी बॉडी पर अपने मेंटल है पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़े टाइम में अपने आप जो हैं ये आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वाला ये वायरल नहीं है इस बार। आपका क्या कहना है, आपकी क्या सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं इसके बारे में, या आप चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे एक मैसेज सेंड कर सकते हैं 5599।

0: So, देखते हैं कम्युनिटी में क्या चल रहा है। यहाँ पर रामकृष्ण मंदिर जो कि मनुकाव में उपस्थित है 25 ऑनस्लो एवेन्यू इनवाइट करता है सभी को टू सेलिब्रेट श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव जो कि होने वाला है अगले शनिवार 29th ऑफ अगस्त से लेकर फ्राइडे 4th ऑफ सितंबर तक। रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाव जो है ये इसका मेन्यू है। 7:30 PM से आप यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। 7:30 से 9 बजे का ये एक डेली प्रोग्राम आपके लिए होने वाला है। कथा जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे नलेश नायडू। कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है और दिव्या शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट हर साल की तरह इस साल फिर से आपके लिए ये उत्सव लेकर आई है जो कि मनाया जाने वाला है शनिवार 29 अगस्त से लेकर फ्राइडे 4 सितंबर तक। इसका जो वेन्यू है वो है 5/57 कैविंडिश ड्राइव मनुकाव ऑपोजिट वेयर हाउस। यहाँ पर भी जो प्रोग्राम है वो शाम 7:30 बजे से आपके लिए शुरू होगा।
1: वेलकम टू कबाब्स किचन, आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
2: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
1: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
2: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
1: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
2: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
3: Rev those savings engines and rush into Briscoe's for huge half-price deal winners. All air fryers, duvet sheets, cookware sets, towels, RoboVacs and microwaves are half price. In Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: I know how to balance my clients' books, but not how to use AI tools to free up my time.
5: When you're a Spark Business customer, you get a network of global and local partners to help with your business. Spark, the best bench in business.
6: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
7: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ।
8: ये गलत बोल दिया यार।
7: और पहनता भी नहीं उसको।
8: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
7: इंटरेस्ट
9: ब्रांड हो गया अभी वो।
8: अभी ब्रांड हो गया ना।
7: रुजबे के बाल लगे उस।
6: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

वेलकम बैक, अ वेरी गुड मॉर्निंग. यहाँ पर मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. आज लेकर आई हूँ आपके लिए ब्रेकफास्ट शो. भाई संडे को सुबह सुबह उठकर और उसके बाद भी अगर आप मेरे ऐसी बातें कर सकते हो, चप्पर चप्पर कर सकते हो, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रोवर्टेड पर्सनालिटी हो, दैट मींस कि आप अपनी नौकरी से बड़ा प्यार करते हो. तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ है और बहुत समय के बाद आज मैं आपके लिए शो लेकर आई हूँ, क्योंकि वायरल द वायरल जो है सब कुछ चल रहा है. अभी बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रखी हैं, कुछ वायरल न्यूज़, वायरल स्टेटस आपके लिए मैं लेकर आऊँगी. साथ में इस घंटे देखेंगे मौसम जो है कैसा रहने वाला है आगे आने वाले वीक में और आज बाकी के दिन में. तब तक आप भी मुझे, अगर आपके घर में बर्थडे है, एनिवर्सरी है, आप ऐसे कहीं पे घूम रहे हैं, कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ जो है यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं. एक टेक्स्ट मैसेज सेंड करें अपने नाम के साथ 5599 पर.

किया गया है, जहां पर आपको सामने वाला बंदा बहुत प्यारा और मासूम लगता है और आप भी बहुत प्यार के साथ आगे बढ़ते हो, बहुत मासूमियत के साथ आगे बढ़ते हो, जब तक कि आपकी मासूमियत जो है ये सामने से खिलनी हो जाती है। इसको कहते हैं एडल्टहुड, जहां पर आप बहुत सारे लाइफ सिचुएशंस के थ्रू जाते हो। ये प्यार मोहब्बत के अलावा बहुत फ्रेंडशिप में भी हो सकती है, धोखाधड़ी रिश्तेदारी में, बहुत जगह होती है। और जब आप उससे बाहर आते हो और उसके बाद भी आप रिस्पेक्टफुल रह सकते हो सामने वाले बंदे के साथ, उसको कहते हैं एकदम हाइपर मैच्योरिटी। वैसे वैसे उससे ही मुझे याद आया कि भाई बॉलीवुड में जो है धमाका चल रहा है, द ट्रेडर्स नाम का एक शो है जो करण जौहर लेकर आए हैं, उसमें मल्लिका शेरावत धमाल कर रही हैं। उसके अलावा गोविंदा जो हैं उनका बहुत स्कैंडल चल रहा है और आपने देख ही लिया होगा क्या स्कैंडल चल रहा है। तो इनके बारे में थोड़ी यहाँ पर हम बातें करेंगे अलॉन्ग विद व्हाट इज गोइंग ऑन इन ऑकलैंड। स्टे ट्यून्ड।

कैब। वेल, अगर आप मेरे शोज सुनते आए हैं और अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको अगर याद है, अगर आप मेमोराइज़ कर सकते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि शाहिद कपूर मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं और मेरा जो क्रश है उनके ऊपर, ये उनकी पहली मूवी से शुरू हो चुका था, इश्क विश्क। एकदम मतलब क्या क्यूट लड़का है, वट एवर, जैसे भी इसको कर सकते हैं। बट यार, शाहिद हैज़ दिस अमेजिंग पर्सनैलिटी। बट मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कॉकटेल 2 देख कर ऑन नेटफ्लिक्स। मतलब मैं नहीं रिकमेंड करूँगी किसी को देखने के लिए, बट अगर आप एक शाहिद फ़ैन हो मेरे जैसे, तो यू कैन गो थ्रू इट। उस मूवी में मुझे शाहिद वहीं अच्छे लगे हैं जहाँ पर वो डांस कर रहे हैं। उसके

0: वेल, गाने की इन पंक्तियों से मुझे याद आई, कहीं पर मैं एक मीम पढ़ रही थी जहाँ पे लिखा था कि इस उम्र में जहाँ पर ये सुनने को दिल तड़प रहा होता है आई लव यू, वहाँ पर ये सुनने को मिल रहा है दैट यू आर एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर. मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. और यही है आम जिंदगी. बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें, प्यारे प्यारे गाने आपके लिए बैक टू बैक ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

आम जिंदगी की बात कर रहे थे हम, दाल चावल जिंदगी के बारे में, उसी में मुझे यहाँ पर किसी ने मेंटोस जिंदगी के बारे में लिख के भेजा है। साहिल जो है ये हमें मनुकाओं से सुनते आए हैं और आज साहिल के घर में एक बहुत ही खास बर्थडे पार्टी, और ये बर्थडे पार्टी इनकी 5-year-old डॉटर का है जिसका नाम है आशिका। सो विशिंग आशिका अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, आप लंबा जिए, हेल्दी जिए, भगवान आपकी कामनाओं को पूरा करे, और आई एम वेरी श्योर आज घर में काफ़ी धूमधाम लगा होगा और मेंटोस जिंदगी वाली पार्टी जो है ये यहाँ पर ज़रूर मन रही होगी। आपके घर में भी ऐसा कोई ओकेशन है यहाँ पर मुझे एक मैसेज भेज सकते हैं 5599 पर।

स्वागत है आपका, वेलकम बैक। हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे यहाँ पर आपके साथ मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा संडे जो है वो स्पेंड कर रही हूँ। दो की मौसम जो है वो हर वीकेंड को दगाबाज रहता है, लेकिन आप और मैं दगाबाज नहीं है। हम एक दूसरे का साथ यहाँ पर पूरा निभा रहे होते हैं। इस घंटे में आपके लिए लेकर आने वाली हूँ थोड़े स्पोर्ट्स अपडेट और साथ में क्या चल रहा है देश दुनिया में, और साथ में हम पर हमारे पॉडकास्ट सेक्शन में क्या नया है, रक्षाबंधन स्पेशल में क्या है, और साथ में इनाम जीतने के मौके आपके लिए बैक टू बैक।

रक्षाबंधन इज़ अराउंड द कॉर्नर और बहुत ही स्पेशल जो है ये त्यौहार है आपके लिए, मेरे लिए. अगर आपके खुद के भाई बहन नहीं है जिनको आपने कभी राखी बांधी हो, आई एम वेरी श्योर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर होगा. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट भाई बहन, भाई मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान जिसको आप ट्रस्ट करते हो और ऐसा लगता है कि आप उसके साथ प्रोटेक्टेड फील करते हो और वो बंदा आपके साथ है, वहाँ पर हम राखी जो है बांधते हैं. खैर ये हो गया लॉजिक वाली बात. बिना लॉजिक अगर बोलें तो भाई बहन का जो एक रिश्ता होता है ये वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉन्ड्स इन द वर्ल्ड आई थिंक. एंड विद टाइम मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाता है और आपको तब समझ में आता है कि भैया वो जो छोटे भाई होते हैं ना जो गिफ्ट्स नहीं देते जब आप उनको छोटे में राखी बांधते हो, वो बड़े होकर इतने मच्योर हो जाते हैं और फिर भी कोई गिफ्ट नहीं देते हैं. एनीवेज यहाँ पर गिफ्ट विफ्ट के बारे में चिंता नहीं करनी है बिकॉज आपके पास मौका है कैश प्राइज जीतने का. अराउंड 2 लकी विनर्स यहाँ पर $250 लेके जा सकते हैं. आपको करना क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी भाई या बहन जो है इसको एक अप्रेजल मिल सकता है बिकॉज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको हमें कॉल करना है वीकडेज के दौरान और फिर आप लाइव हो गए ऑन एयर और आपको अपने सिबलिंग का ऑफिशियल परफॉर्मेंस रिव्यू देना है. तो रिव्यू जो है ये हो सकता है बेस्ट और वर्स्ट सिबलिंग एवर के ऊपर, या बोरोइंग योर स्टफ विदाउट आस्किंग विच इज़ वेरी कॉमन, ऑलवेज गेटिंग यू इनटू ट्रबल अनदर थिंग, बीइंग योर बिगेस्ट सपोर्टर विच इज़ इम्पोर्टेंट, अगर ये नहीं है तो फिर क्या रिश्ता, एंड अनोइंग यू 24/7 इज़ कॉन्टिन्यू टिल डेथ बेड, ये तो रहना ही है. तो यहाँ पे विनर्स जो हैं वो आपके लिए हम लेकर आएंगे 28 अगस्त को.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Rev those savings engines and rush into Briscoe's for huge half-price deal winners. All air fryers, duvet sheets, cookware sets, towels, RoboVacs and microwaves are half price. In Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
6: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
7: Yeah, but nothing quite reaches my standard.
6: Well,
7: within my budget?
6: Zelo.
7: Zelo?
6: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes from 1 to 4 bedrooms with 1 or 2 bathrooms, all packed with premium inclusions.
7: Price?
6: $139K for a fully complete 1-bedroom home and $215K for a 3-bedroom home.
7: Zelo. I like the sound of that.
6: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
8: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
9: Their masalas are gram fresh, in-house every single day.
8: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
9: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
8: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
10: Chill, sip, smile.
11: This is Sunday Breakfast.
12: तो रक्षाबंधन का कंपटीशन आपके लिए हम सोशल मीडिया पर भी रन कर रहे हैं, जहां पर आपके पास मौका है $300 कैश जीतने का. अब सिबलिंग बॉन्ड्स जो हैं सिर्फ एक्सपेंसिव गिफ्ट से तो डिफाइन नहीं होते, मतलब होते हैं बट नहीं भी होते हैं, एंड दे आर आल्सो हेल्ड टुगेदर बाय ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरीज, जैसे पुरानी फोटो हो गई, कोई टी शर्ट हो गई, कैसेट टेप हो गया, कॉफ़ी मग्स हो गए, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने आपके लिए एक रक्षाबंधन का पोस्ट डाला है हम के पेज फेसबुक पेज पर. आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएँ, वहाँ पर अपलोड करें एक फ़ोटो जो कि एक मीन आपकी लाइफ में जो कि मीनिंगफुल है इन द कमेंट सेक्शन, और 2-3 सेंटेंसेस लिखें अबाउट द मेमोरी विच इज़ अटैच टू इट. वहाँ पर आप अपने सिबलिंग को जो है ये टैग करना बिल्कुल ना भूलें. ऐसा करके आप अपने आप को एक ड्रॉ में शामिल करते हैं, जहाँ पर आपके पास मौका है $300 कैश प्राइज़ जीतने का.

आपकी हर मॉर्निंग को यहाँ पर एकदम शानदार बनाने के लिए हमारे ब्रेकफास्ट शो के होस्ट विजय और पूजा आपके लिए ब्रेकफास्ट शो लेकर आते हैं, जो कि 6 से 10 बजे तक यहाँ पर ऑन एयर रहता है। अगर आप बाय चांस कुछ भी इसके बिट्स एंड पीसेस मिस कर जाते हैं तो आप डेफिनेटली जो है ये कैच कर सकते हैं @ ब्रेकफास्ट कैचअप। आपको टाइप करना है BF, इसे भेज देना है 5599 पर।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
7: Rebel's taking it back to 96 with our big birthday blowout. We're celebrating 30 years with up to 30% off store-wide. That's up to 30% off clothing, footwear and equipment. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
8: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island. Like whole chicken legs, $7.99 per kilo. Or Pam's stir fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
10: हाँ। अच्छा,
9: बताओ तुम्हारा फोकस, साडा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह का
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
12: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
13: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
14: And award goes to Indelible Homes.
13: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
15: Kahani of Indelible Homes.
16: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की, जैसे घर पर मिलती थी। तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल। 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री। परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। कशिश नेचुरल योगर्ट।

कल आजकल जो है यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स खोले और उनके स्टार्टअप्स जो हैं बेहद सक्सेसफुल हुए हैं बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट्स में काफ़ी क्लैरिटी है. वो डरते नहीं है. करेज होना बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में. आपके दिमाग में बहुत चीज़ें हो सकती है बट करेज नहीं है आपको सामने आने का. और एंड ऑल्सो द वल्नरेबिलिटी टू फेल, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है. तो यहाँ पर अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुजवे में वी आर मीटिंग युवराज सिंह जो कि एक मेंबर है ई एक्सप्लोर के, अ स्टूडेंट रन बिजनेस टेकिंग पार्ट इन न्यूजीलैंड्स यंग एंटरप्राइज स्कीम. तो यहाँ पर ई एक्सप्लोर जो है ये एक इनोवेटिव कार्ड गेम है जिसको युवराज जो है इन्होंने इन्वेंट किया था. एंड ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट किस तरीके से ये हमारे लिए यूज़फुल है, क्या कुछ मतलब इनकी क्या टोटल जर्नी रही है इसके अराउंड, बिकॉज दिस इज़ दैट टाइम जहाँ पर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स अभी जाके दे हैव सो मच करेज एंड देयर क्लैरिटी एंड विजन इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि वो अपने उस ड्रीम को बिजनेस में टर्न कर रहे हैं. आप टाइप कर सकते हैं ड्राइव, इसे भेज दें 5599 पे, या फिर आप जाके अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुजबे जो हैं ये भी सर्च कर सकते हैं ऑन रोवा एंड एट स्पॉटिफाई.

Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

संडे को मेरा मूड जो है ये रहता है हमेशा एकदम ढिंचक, लेकिन ये सिर्फ सवेरे ही रहता है। दोपहर के बाद शाम होते ही मेरे साथ मंडे ब्लू वाला चैप्टर आजकल शुरू होने लगा है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मंडे ब्लू ये सब उन सब चीज़ों के कहते हैं वो मोह माया के ऊपर उठ चुके हैं। अगर आप उनमें से एक हैं, कैसे किया है आपने, ये क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है, यहाँ पर ज़रूर शेयर करें। वैसे नाम है मेरा रक्षा, आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट शो ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: अगर आप इस न्यूज़ नहीं यार, अगर आप ये क्या बोलते हैं फैक्ट नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शोल्जर मूवी जो है इसका बहुत सारा पार्ट न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों में शूट हुआ है, और साथ में इस पर्टिकुलर सॉन्ग जो कि टाइटल ट्रैक है इस मूवी का, इट्स अ सुपर डुपर हिट मूवी ऑफ इन दैट टाइम, मैं तो आज भी कभी कभी इसको प्ले कर लेती हूँ. अगर आपको याद हो जब प्रीति जिंटा आती हैं, शी इज़ वेयरिंग अ ब्लैक आउटफिट और उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बीनी लगाई हुई है, क्या आपने बीनी को गौर से देखा है? और अगर आपने गौर से देखा है क्या आप पता कर पा रहे हैं अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि ये जो गाना है ये एक्चुअली न्यूजीलैंड में शॉट हुआ है और बहुत सारे अलग अलग जगहों पर ये शूट हुआ था उस टाइम पर, मतलब अभी से बहुत सालों पहले. बट येस, दैट्स हाउ बॉलीवुड हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड, आवर ब्यूटिफुल न्यूजीलैंड. बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, हम जहाँ पर रहते हैं बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आके बसना चाहते हैं, ड्रीम करते हैं. अभी जितना भी जैसी भी हमारी इकोनॉमी चल रही है या जो भी हो रहा है, बट येस, न्यूजीलैंड हैज़ बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ बॉलीवुड. देर आर सो मेनी अदर मूवीज़, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो यहाँ पर शूट हुई हैं, लेकिन उसमें आपका सबसे फेवरेट कौन सा है मुझे बताएं 5599 में.
1: कैसा है आपका मूड?
2: अब तो मेरी जिंदगी बन गई. थैंक्स अ लॉट.
1: संडे मूड मीटर.

मूड आपका यहाँ पर मैं बहुत ही सुहाना करने वाली हूँ, क्योंकि आपके पास मौका है यहाँ पर सोलोमन एयरलाइंस की तरफ से दो रिटर्न एयर टिकट जीतने का टू वाह भाई, ये डेस्टिनेशन का नाम ही बड़ा कॉम्प्लिकेट है मेरे लिए प्रोनाउंस करना, बट इट इज़ VANUATU। ये जो लोकेशन है यहाँ के लिए आपको दो रिटर्न एयर टिकट्स मिलेंगे। करना क्या है आपको, वीकडेज में ध्यान से हमें सुनते रहें, जहाँ पर आपको स्पेशल बोर्डिंग कॉल्स आ सकते हैं एट 8 AM, 11 AM, 1 PM, 5 PM। जैसे ही ये हो, आपके पास 60 मिनट है, एक घंटा है आपको रोवा ऐप पर हमारी जाने का, जहाँ पर आपको टाइप करना है बोर्ड नाउ और फिर सबमिट कर देना है। टाइप करें BC, इसे भेज दें 5599 पे, कॉम्पिटिशन का पेज लिंक भी आपको मिल जाएगा। और जब आप ऐसा करते हैं, आपको इस ब्यूटीफुल से प्लेस पे जाने का मौका मिलेगा। मिस ना करें अपनी फ्लाइट को, मिस ना करें कॉन्टेस्ट को। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।

वेल, एक होते हैं अच्छे दिन, एक होते हैं बुरे दिन, और कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पर बस आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपका मेंटल हेल्थ डाउन द ड्रेन जा रहा है फॉर नथिंग. ऑल्सो बिकॉज हम सब माइग्रेंट्स हैं, कहीं ना कहीं हमें अपनी फैमिली की याद आती है, हमें ऐसा लगता है कि शायद हम लोनली हैं, हमारे पास सपोर्ट नहीं है, हम अपनी मतलब एक सिमिलैरिटी को फील नहीं कर पा रहे, ब्ला ब्ला ब्ला. दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स टू फील. लेकिन इस चीज़ को अकेला फील करने की आपको ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर आपके पास सपोर्ट है, रीच इन रीच आउट. और यहाँ पर एशियन फैमिलीज, एशियन फैमिली सर्विसेज जो हैं, ये आपको आपकी मदद करेंगे टू हैव ओपन कन्वर्सेशंस अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि एक छोटी सी कन्वर्सेशन एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है क्रिएट कर सकती है. और मैं इस चीज़ में 100% बिलीव करती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है मैं लो फील कर रही हूँ, आई एम नॉट समवन हु शट्स अप. मैं जनरली ऑफकोर्स शट अप करना तो मुझे आता ही नहीं है, विच इज़ नॉट ऑलवेज वेरी अ वेरी ग्रेट थिंग टू डू. बट हाँ, मैं अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से जाके अपनी चीज़ों को शेयर करती हूँ. बट यहाँ पर सबके साथ ऐसा नहीं है, नॉट एवरी वन इज़ सो वॉन्ट्स टू बी वल्नरेबल. तो यहाँ पर एशियन फैमिली सर्विसेज पिछले 28 साल से यहाँ पर न्यूजीलैंड में ऑफर कर रही है मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग, सोशल सपोर्ट बाय प्रोफेशनल्स रिलेटेड सर्विसेज को, जो कि आपके लैंग्वेज और कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं. एशियन हेल्पलाइन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 800-862-342 पर, जो कि फ्री और एक कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट है. साथ में आप इनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ एशियन फैमिली सर्विसेस विद एन एस डॉट एन जेड.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
4: Kiwi kids are active kids, creative kids.

0: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Acoustic wall panels, two for $99. Round LED bathroom mirrors, $149. Outdoor heaters, just $129. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
1: Kia ora. If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours.
2: Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
3: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
4: Get the Skinny!
5: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all-time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind. ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
6: Chill, sip, smile.
7: This is Sunday Breakfast.
6: Sunday Mood Meter on Hum.
8: वेल दिल्ली मेट्रो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने अपने सामने ही बिल्ट होते हुए देखा है, स्पेसिफिकली द CP1, उसको कौन सी लाइन बोलते हैं मुझे याद नहीं है, बट यहाँ पर इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू लुक एट इट, बिकॉज मैंने दिल्ली मेट्रो से काफ़ी सफ़र किया है कि इसने अचीव किया है 99.95% पंक्चुअलिटी रेट इन 2026, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेट्रो नेटवर्क्स ग्लोबली. वेल नोइंग इंडिया, जहाँ पर कोई भी चीज़ टाइम पर रन नहीं करती है, 99.95% ऑफ पंक्चुअलिटी रेट इज़ टू मच. हेंस कुडोज टू एवरी वन जिसने दिल्ली मेट्रो को कभी देखा है या उसमें ट्रैवल किया है. और अगर आप दिल्ली से हैं या आपकी फैमिली दिल्ली में रहती है, आप दिल्ली क्वाइट ऑफन जाते हो, आई थिंक इन दिल्ली द बेस्ट वे टू ट्रैवल इज़ दिल्ली मेट्रो. अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं, मुझे ज़रूर बताएं 5599 पर.

0: जो फील हो टिकल योर टेस्ट बड्स.
1: वेलकम बैक. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे आपके लिए जारी है ब्रेकफास्ट शो. मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और दिस इज़ माय एक्चुअली फेवरेट सेक्शन ऑफ द होल शो बिकॉज इट इज़ अबाउट टेस्ट बड्स एंड ऑफ कोर्स फूड. अब जहाँ पर खाने की बात आती है और वो भी संडे ब्रेकफास्ट जो कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील है जो भी हम करते हैं थ्रू आउट द वीक बिकॉज टाइम मिलता है और संडे आराम से होते हैं ना, थोड़ा आराम से उठ के चिल करके फिर आराम से जो है ब्रेकफास्ट बनाते हैं जो कि ब्रंच तक चला जाता है. तो मुझे अगर बोला जाए कि ऐसा कौन सा डे है या ऐसा कौन सा टाइम है या ऐसा कौन सा व्हाटएवर एक्स वाई जेड ब्लैंक्स मैं आपके लिए छोड़ दूँगी, आप भर दो मेरे लिए, कि जब आपको खाना सबसे ज़्यादा पसंद हो, आप आराम से खा पाते हो और आपको अच्छा फील होता है, आई वुड से दैट्स अ संडे ब्रेकफास्ट. सो बिकॉज इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेलिकेसीज एंड क्विजींस. आप भी फॉरवर्ड आ सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि आपका सबसे फेवरेट, अगर आपको लाइफ में इस चीज़ का वरी ना करना पड़े व्हाट इज़ कैलोरी एंड CPF रेशियो एंड फलान ढेमकान, अगर आपको ये सब नहीं देखना पड़े और आप किसी पर्टिकुलर डाइट पे ना हो और आप स्वस्थ हो, आप बिल्कुल बीमार नहीं हो, आप डायबिटिक नहीं हो, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपका सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है, लाइक संडे ब्रेकफास्ट मुझे बताएं और फिर मैं भी अपना फेवरेट जो है शेयर करूँगी ज़रूर आपके साथ. स्टे ट्यून्ड.

वेलकम बैक। खाने की बात कर रहे थे, ब्रेकफास्ट की बात कर रहे थे, टिकलिंग आवर टेस्ट बड्स। तो भाई मुझे, मेरा ये फेवरेट सेक्शन है। और अब बात करते हैं खाने के बारे में, जहाँ पर सारे प्यारे जो लिसनर्स हैं हमारे यहाँ पर, इनसे मैंने पूछा था कि आपका सबसे फेवरेट संडे ब्रेकफास्ट क्या डिश है, क्या हो सकता है। तो लेट्स सी कि लोगों ने क्या क्या यहाँ पर बोला है। सो यहाँ पर इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैंने लोगों को ये बोला कि आप अनहेल्दी फूड जो है इसको भी यहाँ पे लूप इन कर सकते हो, बट टॉपिंग द चार्ट्स इज स्टिल अ लोडेड एवोकाडो टोस्ट। भाई क्या बात है, आजकल द लाइफ, द होल लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल हैज़ चेंज क्लियरली, जिसमें स्मैश्ड एवोकाडो हो साडो के ऊपर, पोस्ट एग्स, चिली फ्लेक्स एंड अ स्क्वीज ऑफ लाइम। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। इट लुक्स लाइक माई वीक डेज, बट अगर वीकेंड्स में भी अगर आप एज अ संडे ब्रेकफास्ट ही खाना पसंद करते हो, भाई हैट्स ऑफ टू यू। इसके अलावा फ्रेंच टोस्ट, पैन केक्स, फुल ब्रेकफास्ट हैश, और साथ में आजकल ना बहुत ज़्यादा क्या बोलती हूँ, ट्रेंड में है, चल रहा है, विच इज़ शक्शुका, मिडल ईस्टर्न बेक्ड एग्स। तो ये जो है काफ़ी फैशन में है एक्चुअली, और आजकल कुछ कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में भी ब्रेकफास्ट मेन्यू में इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या आपने कभी बनाया है या आपने कभी खाया है? और अगर ऐसा है तो भाई मुझे एक अच्छा सा रेसिपी भेजो आप, इसको कैसे बनाते हैं। आई रियली वॉन्ट टू, वॉट

टेम्पटिंग लग रहा है मुझे यहाँ पर देखने में. एंड दो तीन लोग यहाँ पर मुझे मैसेज कर चुके हैं इस चीज़ के लिए कि दे रियली लाइक डूइंग दिस. इसमें बहुत टाइम लगता है, इसीलिए संडे ब्रेकफास्ट हेल्दी भी है और हाउ डू आई ब्रैकेट इट, नॉटी ब्रेकफास्ट भी है, मतलब आपको मन करेगा खाने का, समथिंग एक्साइटिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस, छोले भटूरे जो हैं इसको कैसे पीछे छोड़ सकते हैं यार, छोले भटूरे एंड साथ में आलू दे पराठे विथ सम लस्सी और चाय. ये भी, दीज डिशेज आर ऑल्सो टॉपिंग द चार्ट, बट आपके पास अभी भी मौका है, मुझे भेज सकते हैं आपका फेवरेट संडे ब्रेकफास्ट 5599 पर.

0: Breakfast on Hum.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very
3: acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

भाई न्यूजीलैंड की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है, आई मीन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, ये आप और मैं जानते हैं, बट स्टिल चल रही है हमारी गाड़ी. और ऑकलैंड जो कि है बेस्ट है. इसके अलावा जैसे जैसे आप बाकी सिटीज़ में जाओगे और भी बहुत सारे डिलेज होते हैं, बट वन ऑफ द ग्रैंड थिंग्स दैट हैपन इज़ दैट द ओपनिंग ऑफ द न्यू मेट्रो स्टेशन, जिसका जो लॉन्ग एस्केलेटर, अगर आप उस पर नहीं गए हो, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर ऑन अ वीकेंड, बिकॉज वो न्यूजीलैंड में और कहीं पर है नहीं. अगर आपने कभी नहीं देखा है तो इट्स लाइक एन एक्सप्लोरेशन. और बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ लेकर आ रहे हैं. बट वॉट कैच्ड माई अटेंशन वॉज दी ग्रैंड ओपनिंग. भाई जो ओपनिंग थी उसमें जो डांस था और उसमें जो कलर्स थे, जो वाइब थी, दैट वॉज अमेजिंग. मतलब मुझे लगता है न्यूजीलैंड, आई मीन द गवर्नमेंट और हुएवर अरेंज दिस डिड अ रियली ग्रेट जॉब. अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर की क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको ज़रूर मिल जाएगा, एंड इट्स वर्थ टू हैव अ लुक.

0: चलते फिरते सिर्फ फोटोज आपकी इसलिए, आपकी गाड़ी की इसलिए नहीं ली जा रही है यहाँ ऑकलैंड में या न्यूजीलैंड में, बिकॉज वो आपको गवर्नमेंट एक टिकट देने वाली है. बट आजकल थोड़ा हाई लेवल का गॉड नोस क्या हो रहा है, बट एक रीसेंट न्यूज़ में ये खबर बाहर आई कि जब एक बंदे की पार्किंग टिकट पे उसने ऑब्जेक्ट किया और जाके इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो वहाँ से पता चला कि भाई ये जो कैमराज हर जगह लगे हुए हैं ये सिर्फ यही कैप्चर नहीं करते कि भाई गवर्नमेंट को एक टिकट देनी है आपको तो फॉर एक्स वाई जी रीजंस जो भी कैप्चर करना होता हो उसकी वजह से, बट वो हर चीज़ कैप्चर कर रहे हैं. मतलब आपको और मुझे शॉप्स के अंदर आते जाते, अगर आप बोटॉक्स क्लिनिक पे जा रहे हो, आप पार्लर में जा रहे हो, आप शॉपिंग में जा रहे हो, आप गहने खरीदने जा रहे हो, आप जहां मर्जी जा रहे हो, हर चीज़ जो है वो कैमरे में क्लिक हो रही है. अब ये कौन कौन सी जगह पे लोकेशन से इतना उस न्यूज़ में नहीं था, बट यस ऑल ऑफ अस आर बीइंग कैप्चर्ड एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस फॉर एक्स वाई जी रीज़न जिसके बारे में हमें भी नहीं पता. इट्स नॉट ओनली पार्किंग टिकट्स गाइज. अगर आपने ये न्यूज़ नहीं पढ़ी है तो आप जाके पढ़ सकते हो. और आपका, आप क्या सोचते हो इसको लेके, इज़ इट राइट या रॉन्ग? इसमें राइट रॉन्ग क्या है, बट क्या हो रहा है, मतलब क्यों ऐसा किया जा रहा है, आपको क्या लगता है, मुझे बताएं 5599 पर.
1: लेट्स कीप इट लाइट एंड ब्राइट ऑन संडे ब्रेकफास्ट.
2: अटेंशन एवरीवन, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर.
3: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आप

0: सिबलिंग को ले आइए हम बोट रूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल। रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Centre.
2: At Bunnings, we've got gifts built for Dad, like the Jack Garden Upwall System, only $85.95. Ryobi 1 Plus 18-volt pruning saw, tool only, just $149. That's Father's Day sorted at Bunnings.
3: Bunnings Warehouse.
2: Lowest prices are just the beginning.
4: And if you're just joining us after the break, we're talking about... Holy... $10 deals on Uber Eats? Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
5: Make layovers something to look forward to with the American Express Gold Rewards business card. You can earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Plus, enjoy 2 priority pass visits each year in over 1,300 airport lounges worldwide. Search Amex Business and turn payments into points. Offer ends 14th of December 26, 1.5k minimum spend in the first 3 months. New Amex card members only. T's and C's for membership rewards and lounge exclusions apply. Priority pass enrollment required.
6: Brewing good vibes, Sunday style.
0: Sunday breakfast on Hum.
6: Zaika to feel ho. Tickle your taste buds.
7: सो टिकल योर टेस्ट बड्स में आज मैंने हमारे लिसनर से शक्शुका रेसिपी जो है इजी वाली पूछी थी, तो मुझे यहाँ पर कुछ मैसेजेस आए जिसमें से मैं खुद ब्रेक डाउन करके एक आसान सी रेसिपी निकाल चुकी हूँ, बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली लेजी और मुझे एक अच्छा इजी पीजी ब्रेकफास्ट अगर मिल जाए तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, एंड ऑफकोर्स टेस्ट बड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप बनाना चाहते हैं तो देर आर 3 parts टू इट, नहीं ओनली 2 parts टू इट। पहले एक सॉस बनाना होता है और उसके ऊपर अंडे को फोड़ देना होता है। बहुत आसान है, एक पैन लीजिए, उसमें 2-3 चम्मच आपका जो भी फेवरेट ऑयल है डाल दो। अगर आप घी चाहते हो, बटर चाहते हो, ऑलिव ऑयल चाहते हो डाल दो, मुझे लगता है ऑलिव ऑयल सबसे बेटर रहेगा इसमें। अनियन, बेल पेपर, चॉप्ड गार्लिक ग्लोव्स डाल दो, नमक डाल दो, कोरिएंडर एंड पापरिका पाउडर डाल दो, क्यूमिन डाल दो, क्रश्ड पेपर फ्लेक्स डाल दो। अब ये सब का कितना अमाउंट है डिपेंड करता है आप कितने अंडों का बनाना चाहते हो, बट आई थिंक वो आप अनुमान लगा लोगे अगर आप एक रेगुलर कुक हो और आजकल खाना बनाना सबको आता है, बेसिक ह्यूमन नीड। उसके बाद 5 मिनट तक इसको चलाते रहो, स्टर करते रहो। उसके बाद फ्रेश टोमेटोज डालो इसमें, ठीक है, और साथ में 1/2 cup टोमेटो सॉस भी डालो। अगर आपके पास फ्रेश टोमेटो नहीं है तब टोमेटो सॉस डालो प्लीज़, नहीं तो ज़्यादा सॉस हो जाएगा। इसके अलावा अभी इन सब चीज़ों को बॉईल पर आने दो, 15 मिनट तक कुक होने दो, और उसके बाद 3-4 holes करो बीच में पैन में और उसमें अपना अंडा डाल के और उसको ढक दो। दैट्स ऑल गाइज। अब अंडे को कितना आपको कुक करना है ये आपके ऊपर है, जैसे आई लाइक वेल कुक्ड, बट इसमें पोच्ड एग्स जो है इसका ही मज़ा है, और साथ में आप इसको ब्रेड, रोटी, पिटा जिसके साथ भी खाना चाहते हो खा सकते हो। अब इसमें आप मीट भी ऐड कर सकते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन जो कि आप कर सकते हो, बट आई थिंक इट्स अ रियली नाइस, हेल्दी, ईजी एंड साथ में सोफेस्टिकेटेड रेसिपी एंड अ डिश फॉर अ संडे ब्रेकफास्ट। आपका क्या?

0: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
1: Flooring Extra. Adore your floor.
2: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
3: Make your space your own for lease at Mitre 10. Save $150 on a Robinhood 60cm dishwasher, now $449. And conquer the clutter with 30% off JobMate heavy-duty storage boxes. T's and C's apply. Shop these great deals and more at Mitre 10.
4: We gotta go.
5: Please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
6: HUM boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
7: Let's go.
6: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, hamari koi branch nahi hai.
8: Chill, sip, smile.
10: This is Sunday Breakfast.
11: वेलकम बैक. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे आपके लिए जारी है ब्रेकफास्ट शो और टाइम आ गया है अभी वेदर की जानकारी लेने का और देने का. तो आज का जो हमारा दिन है ये क्लाउडी ही रहने वाला है. क्लाउडी पीरियड्स विद अ पीरियड. शाम को काफ़ी बारिश जो है ये देखने को मिलेगा. मिनिमम टेम्परेचर 10, मैक्सिमम 18. सनसेट जो है इट विल बी एट 5:54 PM. इसके अलावा लेट्स गेट इनटू द वीक. जहाँ पर भी नहीं, जहाँ पर मंडे बहुत सुपर सनी होने वाला है. मतलब इमेजिन कर सकते हो आप वीकेंड ऐसा और फिर मंडे सुपर सनी, जब हम वापस से अपने कार्यक्रम मतलब काम पर जाके बैठ जाएंगे या जो भी आप करते हो अपने काम पे काम कर रहे होंगे. ट्यूसडे ऑनवर्ड्स अगेन इट इज़ गोइंग टू बी क्लाउडी, विंडी, रेनी. वेंसडे को बारिश, थर्सडे को क्लाउडी और फ्राइडे से बारिश की शुरुआत. लेकिन जो ठंड हमें लास्ट वीक देखने को मिली थी मिनिमम टेम्परेचर में, वो बढ़ता जाएगा. मिनिमम टेम्परेचर अराउंड 9 से 10 डिग्री के अराउंड और मैक्सिमम 16 से 17 डिग्री के अराउंड रहने वाला है. लेकिन अगेन फिर से बोलना चाहती हूँ, अगर आप जो हैं बीमार हो रहे हैं, हो चुके हैं एंड ऑल दैट, प्लीज़ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहें. अपने आप को अप्रोप्रिएट रेस्ट दें टू रिकवर. एंड यस, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का और भी ज़्यादा ध्यान रखें एंड डोंट फॉरगेट टू कीप हमिंग अलॉन्ग.

कुछ ऐसे गाने, मूवीज, एक्टर्स और इंसान हमारी जिंदगी में होते हैं जिनमें इतनी एनर्जी होती है ना कि ऑटोमेटिकली आप भी अपनी नींद से, अपने लेजीनेस से बाहर आ जाते हैं। और ऐसी मूवीज देखना, ऐसे गाने सुनना और ऐसे लोगों के अराउंड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर में एक चीज़ बहुत अच्छी है इस मूवी के बारे में और इसके गानों के बारे में, दैट यू फील लाइक अ लॉट ऑफ एनर्जी। मतलब एकदम मेरे अंदर तो ऐसे बबूले ऑफ एनर्जी फूटने लगते हैं, क्योंकि मुझे जब भी मैं रणबीर सिंह को देखती हूँ, आई हैव नो आइडिया क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब, मतलब इस बंदे के अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी हैप्पीनेस है। ऑफकोर्स उनके अपने दिन होते होंगे, बट द वे ही कम्स अक्रॉस लाइक जैसे होता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल, मतलब वैसे बबूले ऑफ एनर्जी जो हैं ये उनके अंदर फूट रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं या आप खुद अगर ऐसे पर्सन हो तो भाई वेल डन। बहुत मुश्किल है ऐसा होना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू डू, बट क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि लुकिंग एट दिस एक्टर एंड ऑफकोर्स दीज काइंड ऑफ मूवीज, स्पेसिफिकली धुरंधर, आपको एकदम ऐसा लगता है कि वो एक एनर्जी आ गई है। मतलब अगर आप डेड लिफ्ट करने जा रहे हो और नहीं हो पा रहा, अगर ये गाना आपके बजना शुरू हो गया अगर कानों में, तो हो जाती है लिफ्ट जो भी हाथ में है। क्या कहना है आपका?

फादर्स डे इज अराउंड द कॉर्नर और हर साल की तरह हम पर जो है सेलिब्रेट जरूर करने वाले हैं और जब हम सेलिब्रेशन करते हैं तो यहाँ पर इनाम जीतने के मौके भी लेकर आते हैं। बट इस बार का जो मौका है ये इतना आसान नहीं है इसमें इनाम जीतना, क्योंकि इस बार हम जो है डैड्स को एक पेडेस्टल पे डाल रहे हैं। व्हेन आई से दिस हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई हम अभी जितने यहाँ पे डैड्स हैं जो फादर्स हैं इनको हम कुछ फन क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट लाइक पॉप कल्चर, टेक, मॉडर्न स्लैंग, जिसमें आधे से ज़्यादा तो मुझे ही नहीं पता कि भाई क्या चल रहा है अभी मार्केट में। तो ऐसी कुछ चीज़ें होंगी और उसमें करना क्या है आपको, वीकडेज के दौरान ना हमें कॉल करना है 0800-004-866 पे, कॉल करके उस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप सही आंसर देते हो तो आपका नाम एक ड्रॉ में शामिल होगा, जिसके बाद 4th of September विच इज़ अ फ्राइडे एक लकी फादर डैड जो हैं ही विल बी ड्रॉन टू विन अ $500 कैश। तो भाई दिस टाइम दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी, मतलब काफ़ी फन होने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस भी यहाँ पर जो हैं वो होने वाले हैं ट्रिकी और हो सकता है बहुत सारे लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ी इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले। एंड आई थिंक द बेस्ट पर्सन टू टीच कैन बी योर ओन चिल्ड्रन। सो यहाँ पर डैड ड्रॉ जो है वो आपके लिए हम लेकर आएंगे फ्राइडे 4th of September को। टर्म्स एंड कंडीशंस टू अप्लाई।

0: दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
3: Rebels taking it back to 96 with our big birthday blowout. We're celebrating 30 years with up to 30% off store-wide. That's up to 30% off clothing, footwear and equipment. Only at Rebels Sport. See online for T's and C's.
4: Want to be rewarded 5 times faster? Boost your offers in the Everyday Rewards app, spend with our partners and scan your card to enjoy more points. Download the Everyday Rewards app today and boost away. TCs and exclusions apply.
0: Chill, sip, smile.
5: This is Sunday Breakfast.
6: सो फादर्स डे के अवसर पर यहाँ पर आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट लेकर आई हूँ, बट देयर समथिंग एल्स जो कि आप कर सकते हैं और पता चलेगा कि कितना बड़ा सुपर हीरो आपके अंदर भी यहाँ पर छुपा हुआ है। आपको करना क्या है, आपको एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो ऑफ योर डैड जो है ये शेयर करना है हमारे कॉम्पिटिशन पोस्ट पर ऑन आवर फेसबुक पेज हम 104.2 FM। यहाँ पर अपने डैड को टैग करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को यहाँ पर इस फोटो को आकर लाइक करने के लिए बोलिए। जितनी ज़्यादा लाइक होगी उतना ज़्यादा चांसेस होगा आपका एक ड्रॉ में शामिल होने का, जहां पर आपको मिलेंगे $300 कैश प्राइस। बट देयर इज अ टर्म्स एंड कंडीशन इज वेल हियर कि जो भी यहां पर उस फोटो को लाइक कर रहा है उनको हमारे हम के फेसबुक पेज को फॉलो करना है एंड साथ में कंपटीशन पोस्ट जो है इसको भी जरूर लाइक करना है।

थैंक यू सो मच मेरा साथ निभाने के लिए. मेरी और आपकी जो मुलाकात है वो फिर से होगी बहुत ही जल्द. तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का और भी ज्यादा ध्यान रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप हमिंग अलॉन्ग.